नमस्कार श्रोता बंधु शुभ सकाळ आपण माने सुनुछंते 104 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक को आज हेउचे इंग्रजी तारीख 29 तारीख जून मास 2026 मसीहा सोमवार 1948 सकाप्त मास आषाढ़ 8 दिन आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे आपण समस्तंक शुभेच्छा एवं अभिनंदन आपण माने सुनुछंते 104 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक को आमर समस्त श्रोता बंधु मान स्वागत जणी आम आरंभ करुछु आज सकाळ अधिवेशन कार्यक्रम मु अच्छी आपण मान सहित देवमित्रा

0: ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସମାଚାର ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनिशंति भवभक्ति भरा कार्यक्रम और खेताले देवमित्रा सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक है। हाँ, अपेक्षार पर्व भावभक्ति भरा पर्व हेउछि देवस्नान पूर्णिमा। आषाढ़ रथयात्रा पूर्वरु जगन्नाथ संस्कृति रे आसे एही अपूर्व मुहूर्त। एहा केवल एक धार्मिक आचार नुह, बरं भक्त और भगवान को मध्यरे थिबा निबिड़ संपर्क एक अनन्य अनुभूति। आज दिन महाप्रभु को 108 घट पवित्र जल रे स्नान करा जाए। ढोल मोहरी घंट हुळहुळी रा शब्द रे कंपी उठे सारा परिवेश। एपरी लागे सते जेपरी स्वर्ग धरापृष्ठ को ओह्लाई आसिछि, किंतु आनंद भितरे लुचि रहिछि एक विरहर भाव। हाँ, स्नान परे महाप्रभु अस्वस्थ हुवंती, अनवसर गृह को जानती। 15 दिन धरी भक्त माने तांकर दर्शन पांती नहीं। एही अपेक्षा ही रथयात्रा रा आनंद को आहुरी गभीर कर दिए। हाँ, हेले आम कालिया सांत कृपाणु सांत, सी प्रभु अल्लारनाथ रूप से दर्शन दियंती एवं खीरी भोग खाई सबु जगार चर्चित रुहंती। एही दिन मानंकरे अल्लारनाथंकर दर्शन करा जाए। हाँ, आउ देवस्नान पूर्णिमा आमको सिखाए जे जीवन रे विश्राम मध्य आवश्यक, अपेक्षा मध्य जीवन को आहुरी सुंदर करिथाए, आउ पुनर्मिलन रो आनंद सबुठारु अधिक मधुर होइथाए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान् भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान् विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस देशस्य समकक्षेन डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान् द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम् आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान् आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षी अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन् अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः षोडशे सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति श्री नड्डा अस्मिन्

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और

0: दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी

0: और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112317107 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी

0: अच्छा तुम सब रिपोर्ट देखे एचआईवी टेस्ट है
1: नाई डाक्टर बाबू से निहाती जरूरी
2: आज्ञा हाँ गर्भावस्था रे प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करे नी अजना आतंक ठु दूरे रहंतु
3: जदि रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया रे निजे तथा शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करंतु
2: मनि रखंतु एई परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्टरखाना रे थिबा आईसीटीसी केंद्र रे मागणा रे उपलब्ध
3: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करंतु
2: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी।

0: टीम कुछ अपर मान 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक हृदय मित्र अच्छे आप सहित शो नहीं डाल इन लाइव रल तो देखा आम सहित कथापाई किए अच्छा फोन कल सी कौन कहते आज टॉपिक को नहीं हेलो
1: हेलो जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग
0: जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग नमस्कार किए कहते कौट कहते
1: अच्छा कह पड़ा ना

सो चलिए रेनबो एसएमएस राव आपण माने ट्यून करी छंदे आपणकर अति प्रिय एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक असन देखिबा परवर्ती एसएमएस के कोठ लिखि छंदे एवं कोन लिखि छंदे एही एसएमएस आसीछु कंटीलो आठगोड रो लिखि छंदे समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला एवं मामारी लिखि छंदे जय श्री जगन्नाथ आपणक मध्य जय श्री जगन्नाथ लिखि छंदे आज पवित्र स्नान पूर्णिमा रे आपणक गुटे भक्ति गीत आमे आपणक ठो आशा करूछु निहाति भाबरे लिखि छंदे मन गीत टी शुणा को चाहते भिकारी चरण बड़ कंठरे निहाती भाव सुंदर गीत टी आपको श्योर शुणी चलते परवर्ती एसएमएस आड़ को बढ़िया एसएमएस लिखा गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग एसएमएस कर नीलमाधव शतपथी फुलनखरा कटक रु लिखी शुणा को चाहते कोठ भोगकिया मो चका आखिया गीत टी निहाति भाव मन पसंद गीत देव मित्र आपको श्योर शुणेदेव चलत बिल्कुल भी लेट नक शुणी नवा बैक टू बैक दुईटी सुंदर भजन को

सुनिश्चित नहीं अपने माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टक दिल से दिल तक खड़े देवों मित्र आचार्यों का सहिता शोनी किरण बॉयस मिस्रा चलो तो देखिए वापर वर्ती एसएमएस के आउट लेखो चांदे यही एसएमएस लेखे चांदे राहस कुमार बेहरा ढिंका नालरो लिखिछन्ति गुड मॉर्निंग मैम सुबह सकाळ आजर उपस्थापन बहुत सुंदर थिला गीत गुडी को मध्ये बहुत भल थिला सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद आपनकु मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद इति सुंदर

सुन शून प्रमाणे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक दिल से दिल तक देव मित्र आज आपंक सहित कि समय मत इशारा कला आपठ मत विदाय नहीं पड़े कि कह सब हस था अन्न मस पक्षर गोटे सुंदर कारण साजु था आज देव मित्र को विदाय दिंतु लव यू ऑल टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड पवित्र देवस्नान पूर्णिमार समस्त ढेर सारा शुभेच्छा जगतर नाथ जगन्नाथ आपण करुणार वर्षा करंतु आशीर्वाद सब रखी था तो आज एक कथा सहित देव मित्र को विदाय।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर ये समय है बॉलीवुड ट्रेल्स का, यानी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, ढेर सारी अपडेट्स इसी समय होती हैं, इस घंटे होती हैं और साथ में होते हैं आपके मनपसंद एकदम नए नए ताजा तरीन बेहतरीन गाने भी उन्हीं अपडेट्स के साथ। तो आपके लिए एक सवाल भी तो है और भी तो बहुत कुछ है जो आपको इस शो को बिल्कुल छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, मजबूर कर देगा ऐसा नहीं बोल सकती, मजबूर नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए एक सवाल होता है और उस सवाल का जवाब देना है अगर तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होता है और सवाल पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी समझनी जरूरी है क्योंकि आप बॉलीवुड से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं बबीता त्रिपाठी के साथ भी। तो आप जुड़े रहिए इस शो बॉलीवुड ट्रेल्स में बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है। एंजॉय।

देखिए जी, आंखों से आंखें चार तो यहाँ पर हो नहीं सकती, यहाँ पर तो हम दिल से दिल मिलाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो के जरिए हम दिल की बातें करते हैं और अपने मन की बातें, हमारे मन की बातों में ये भी शामिल है कि हम बॉलीवुड की बातें करें, क्योंकि बॉलीवुड थोड़ा सा हमें फिल्मी कर देता है और हम फिल्मी होना बड़ा पसंद कर देते हैं, और हमारे जो स्टार्स हैं वो इसीलिए स्टार्स हैं क्योंकि हमने उनको अपने दिल में जगह दी है। तो उन स्टार्स के बारे में जानना समझना नहीं चाहेंगे आप, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं और कर रहे हैं, वैसे बॉक्स ऑफिस का क्या हाल है ये भी तो जानना है। चलिए मैं बताती हूँ, फिलहाल आपको बता दूं कि आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए एक व्हाट्सएप मैसेज वाला करने वाला एक सवाल आएगा जिसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, तभी जब आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे ध्यान से। और आसान सा सवाल होगा वैसे, क्या पता आप वैसे भी बिना सुने भी आप जवाब दे दें, अगर आपका ज्ञान बॉलीवुड की दुनिया में उत्तम है तो। फिलहाल आपको बता दूं कि उस जवाब का अगर आप उस सवाल का जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए इतनी आसान सी बात करनी हो तो कौन ही नहीं चाहेगा बॉलीवुड सरताज बनना, क्योंकि हमसे बात करने का मौका जो मिलता है आपको। फिलहाल इतनी सी बात, अभी आपको बता दूं बॉक्स ऑफिस का हाल। वेलकम टू द जंगल रिलीज हो गई और रिलीज होने के बाद क्या धमाल कमाल और बवाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, जानना अगर आप चाहेंगे तो हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या पता आपने वेलकम टू द जंगल नहीं देखी है और आप इस बात के इंतजार में हो कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर चल कैसे रही है। जब अच्छी चल रही होगी तब जाएंगे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिस तरह से वेलकम टू द जंगल की शानदार बातें हो रही थी, इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट, इतने सारे स्टार्स एक साथ आने को तैयार थे और ऐसे में बहुत सारी चर्चा गर्म थी, तो वो गर्मा गर्म खबर आ गई है कि अब वो चल कैसे रही है। 26 जून को ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और उसके बाद से ये वेलकम

ये तीसरी जो फ्रेंचाइजी है किस तरह से कमाल कर रही है वो बता देती हूँ। पहले दिन 15.25 करोड़ ओपनिंग हुई, उसके बाद 31.1% की अच्छी बढ़ोतरी, उसके बाद भी पॉजिटिव रिस्पांस आता रहा और खास तौर पर लास्ट के दिनों में और बढ़िया, मतलब वीकेंड पर बहुत बढ़िया कमाई की इसने। 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग की दूसरे दिन, उसके बाद कलेक्शन आता गया और अब 63.75 करोड़ भारत में, और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 59.75 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया है। सौदा बुरा नहीं है। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

श्रद्धा कपूर की एक मूवी आने वाली है ईठा। रिलीज से पहले थोड़ा सा विवादों को में घिर गई है, पता है क्यों? क्योंकि टाइटल ना कुछ अलग डिमांड किया जा रहा है कि टाइटल को बदलना चाहिए, ईठा के बजाय कुछ रियल बायोपिक जिस पर ये बन रही है मूवी वो नाम रखा जाना चाहिए। ये मूवी बन रही है लावड़ी कलाकार मीठाबाई नारायण गांवकर के रूप में, जो श्रद्धा कपूर हैं वो निभा रही हैं इस रोल को। और ये लावड़ी और तमाशा कलाकार हैं मीठाबाई नारायण गांवकर, और इन पर जब ये मूवी बन रही है तो उनके परिवार वालों का कहना है और भी लोगों का कहना है कि भाई जब मीठाबाई का कैरेक्टर निभा रही है उन पर बायोपिक बन रही है तो नाम ईठा क्यों, मीठाबाई क्यों नहीं? अब फिल्म किसने बनाई है, नारायण उतेरकर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या सोचकर या उनकी टीम ने क्या सोचकर ईठा नाम रखा है ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल विवाद गहरा रहा है बॉस। और विवाद इस तरह से अगर लंबा हुआ तो क्या पता ईठा का नाम मीठाबाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो फिलहाल तो हम इंतजार करेंगे, नाम कुछ भी हो ये

मूवी आए ताकि हम भी इस कलाकार के बारे में और बेहतर जान पाए, है ना। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से या नहीं, क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए सवाल लेकर आऊंगी। बॉलीवुड सरताज जो बनाना है आपको।

मिर्जापुर जो सीरीज आई थी उसमें आपने किसी कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दिल से पसंद किया हो तो बताइए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बिल्कुल यूनिक नहीं था। उसमें हर कैरेक्टर अपने आप में एस्टैब्लिश था, यूनिक था और बहुत एंटरटेनिंग था, है ना। और शायद इसी वजह से ये मूवी आ रही है, मिर्जापुर द मूवी। और इस मूवी में हमारे गुड्डू भैया उसी तरह की कुछ तैयारी के लेकर आएंगे, ऐसा उनका कहना है। गुड्डू भैया कह रहे हैं कि तैयार हैं एकदम, और उसी तरह की तैयारी की थी जैसे कि उन्होंने वेब सीरीज बनाने से पहले की थी।

और अब ये मूवी एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बिजी है, मतलब इस पर चल रहा है ये काम, और जनता की फिल्म है और पहले सीजन की तरह ही वो ओरिजिनल कलाकार का लुक उनको दिया गया है और लोगों को वैसा ही मजा आने वाला है। गुड्डू भैया कौन? अली फजल। जानते नहीं है हमारे गुड्डू भैया को? अली फजल से ज्यादा हम गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं उनको। तो अभी तो वो निर्माता भी बन चुके हैं, अभी तो अपना प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, बहुत सारी न्यूज भी आने वाली है उनके बारे में। तो आप बस ऐसे ही सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। वैसे बीटी नहीं भी बताएंगी तो कोई और बताएगा, लेकिन इस घंटे बॉलीवुड की खबरें पक्की हैं आपके लिए। बस आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर, क्योंकि हमारे लिए पहला

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।

एक मूवी बहुत पहले आई थी, मैं खिलाड़ी तू अलाड़ी, और ये गाना याद है, हर किसी की जुबान पर था। और एक बात और जुबान पे थी, क्या कमाल की जोड़ी है सैफ अली खान और हमारे खिलाड़ी कुमार आई मीन अक्षय कुमार की। फिर तो ये जोड़ी बहुत लंबा इंतजार करवाती रही एक साथ आने के लिए, और अब जब आ रही है तो हम तो आपको कुछ अपडेट देना चाहेंगे ही, बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन हाँ रिलीज डेट इनकी एक साथ जो मूवी आ रही है उसकी आ गई है, तो ये खबर तो बनती है ना, 11 सितंबर हैवान मूवी देखने जाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो इस गाने को फिलहाल एंजॉय कीजिए, तब तक मूड बनाइए, टाइम बहुत है। हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक तो जैसे कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। और आप बिल्कुल खफा मत रहिए, आपके लिए सवाल एकदम रेडी है, 11:30 बजने ही वाले हैं और आपके लिए सवाल आएगा और उसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज।

भैया सैफ अली खान और अक्षय कुमार की सस्पेंस थ्रिलर 11 सितंबर को हैवान नाम की मूवी रिलीज हो रही है और आपको अगर देखना है तो अभी बहुत सारा टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल आप इंतजार कर रहे थे कि आपका सवाल कहाँ गया भाई, तो लीजिए आपका सवाल हाजिर है, हमारा सवाल हाजिर है जिसका जवाब आपको देना है। और अगर आज किस्मत ने साथ दिया तो बॉलीवुड से आज क्या पता आप ही हो और हमसे बात करने का मौका मिले। तो चलिए आपको सवाल अब बताते हैं। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल का जो रोल है या कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? बता तो दिया, बस आपको बताना है व्हाट्सएप मैसेज करके। कैसे? 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, और अगर बॉलीवुड सरताज ना भी बने तो आपका नाम शामिल होना तो एकदम पक्की बात।

है, है ना सौदा एकदम खरा खरा। तो फटाफट अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप मैसेज कर डालिए। नंबर अगर नहीं सुना तो वो भी बता देती हूँ, इवन सवाल भी बता देती हूँ। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड रील्स, बोले तो बीटी विद बीटी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी। बीटी विद बीटी सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और आपको बता दूं कि मेरी बहुत सारी अपडेट्स बॉलीवुड की जो मैं लेकर आई हूँ ना वो आप तक जा चुकी हैं। और मेरे पास एक और उड़ती उड़ती खबर आई है और अभी जस्ट आके बैठी है, तो वो ये है कि अक्षय कुमार, अभी उनकी बात हो रही थी खिलाड़ी की, इतनी सारी सीरीज आ गई है, कह रहे हैं कि क्या पता कि वो एक और खिलाड़ी सीरीज बनाने में एक और कड़ी जोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम फाइनल कर लिया है, नाम उनको पसंद आ गया है। और वो नाम है, वो बता देती हूँ, जो कुछ भी आएगा वो बता देती हूँ और आगे की जो अपडेट आएगी वो भी बता देंगे। आप तो बॉलीवुड ट्रेल सुनते ही है ना रेगुलरली, तो सब आपको पहुंचता जाएगा एकदम ताजा ताजा। फिलहाल तो यही खबर आई है कि वो जो खिलाड़ी की अगली सीरीज का जो किस्त लेकर आएंगे ना, अगला जो जो भी फिल्म फ्रेंचाइजी लेकर आएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे खिलाड़ी कुमार। और इसके अलावा अभी वो स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, बाकी चीजों पर काम करेंगे, लेकिन नाम फाइनल कर लिया है और वो अब तक पहुंच गया है। तो क्या पता आगे हमें खिलाड़ी कुमार भी एक मूवी के

नाम से अक्षय कुमार को हम देखें, तो अभी तो फिलहाल बहुत सारी मूवीज उनकी लाइन में है और रिलीज आसपास की डेट्स में ही होने वाली है, आसपास के मंथ्स में ही होने वाली है जैसा अभी बताया था, तो उनका एंजॉय करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं और बाकी की चीजें बाद में। फिलहाल तो ये गाना एंजॉय कीजिए और एक बार और आपको सवाल बता देती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड सरताज बनने के लिए क्या पता अभी आपने सवाल नहीं सुना है ना।

देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज का सवाल क्या है तो आपको बता देती हूँ आज का सवाल। आपने क्या पता मिस कर दिया हो, तो उसके लिए भी हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आते हैं थोड़ी देर बाद। एक बार रिपीट कर देते हैं भाई, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो जी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम इसलिए होता है कि आसान सा सवाल है। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको हमसे बात करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आप बनेंगे बॉलीवुड सरताज और रैंडमली हम किसी को बॉलीवुड सरताज चुन सकते हैं और बस चुनने के ही लिए एकदम हम बेकरार हैं। आप जवाब तो दीजिए। सवाल यह है कि मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? मिर्जापुर द मूवी जो कि आने वाली है, वैसे तो वही नाम है जो मिर्जापुर सीरीज में था, लेकिन नहीं पता तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो वही नाम है, इतना हिंट मैं आपको दे देती हूँ। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? यही है आज का सवाल, जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। व्हाट्सएप मैसेज करना है बिल्कुल आसान, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम भेज देना है 9868107070 पर, 9868107070। सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

देखिए जी, आप सबके मैसेजेस की लाइन लग गई है और मैं चाहती हूँ कि किसी का नाम मिस ना हो, तो फटाफट आप सबके नाम जिन्होंने जवाब दे दिया है, जो बॉलीवुड सरताज का सवाल था उसका जवाब दे दिया है, उन सबके नाम लेती हूँ। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज दिल्ली से आया है और नेक्स्ट मैसेज अरुण सेन का मध्य प्रदेश से, हरीश गौड़ मेरठ से लिख रहे हैं, विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है भाई, ये सलीम मलिक मेरठ से हमेशा की तरह, तरुण कोहली सूरज कुंड से हमेशा की तरह, बसंत तोमर किसी ने अपनी जगह चेंज नहीं की है मेरठ से ही लिख रहे हैं, प्रवीण कुमार मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं और आसिफ मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से और हैरी सिंधु भटिंडा से, शंकर गोवा पंजिम से, नौशाद चौधरी ने भी लिखा है लेकिन क्या लिखा है ये लंबा मैसेज है वो जो नहीं शामिल हो सकता, और उसके बाद अनूप साहू का मैसेज दिख रहा है और कहां से ये नहीं दिख रहा है, पूजा एंड कोमल हरिनगर न्यू दिल्ली से, नेक्स्ट मैसेज है किसका, अपना नाम सबसे पहले लिखना चाहिए था भाई श्रेयांश, नहीं तो अगली बार से नाम नहीं शामिल होगा, रोहिणी दिल्ली से ये मैसेज आ रहा है, मिसेज धर्म भाटिया का भी मैसेज आ रहा है बठिंडा से और चितरंजन सक्सेना का मैसेज नोएडा से आ रहा है, जाहिद अहमद का मुजफ्फरनगर से आ रहा है और उसके बाद अरुण कुमार का भी मैसेज शायद चंडीगढ़ से आ रहा है और ये है किसका नाम नहीं लिखा, विवेक मैंने ढूंढ निकाला आपका नाम क्योंकि हमारा कंप्यूटर ना ढूंढ लेता है, आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा था, अगली बार से ध्यान रखिएगा, उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, गोविंद पंडित ये बहुत सही है, गोविंद पंडित पंडित ने सही जवाब में भी पंडित लगाया है, वेरी गुड, मोहम्मद फरकान सियाल मेरठ से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अररिया बिहार से और राकिब का मैसेज है, कुछ ऐसा ही नाम है और मैं जल्दी जल्दी में अगर गलत पढ़ूं तो देख लीजिएगा क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम नहीं लिखा तो ढूंढना पड़ा मुझे, और सुप्रीत का मैसेज दिल्ली से लिखा है, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर से और इरशाद अशरफी का भी मैसेज दिख रहा है और किसका मैसेज दिख रहा है, प्रदीप सागर का मैसेज दिख रहा है, वसंत बिहार से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से और मोहम्मद इमरान का इमरान बिहार से लिख रहे हैं और मोहम्मद फरकान का भी मैसेज कहीं था, अगर नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मिस हो गया ना तो कम से कम 50 मैसेज इस बात के लिए आएंगे कि आपने मेरा नाम शामिल क्यों नहीं किया, बहुत डर लगता है भाई। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड सरताज ढूंढ कर लाती हूँ, आप सब रेडी रहिए, नेटवर्क में रहिए, क्या पता आप ही को ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज जाए।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी

दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी। और सबसे बढ़िया इंतजार आप सब के लिए जो है वो ये रहता है कि बॉलीवुड सरताज क्यों कौन बनेगा। कहीं आपकी कॉल आपको तो कॉल नहीं आने वाली है और आपका इंतजार अब खत्म हुआ। बॉलीवुड सरताज जिसको भी बनना है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये चुकी है। अब ये तो अब बस थोड़ी कुछ सेकंड्स में खुलासा हो जाएगा, लेकिन कुछ नाम है जो मिस हो गए, जैसे बही। कुछ ऐसा नाम होता है क्या, कार्तिक शायद नाम है सही, लेकिन उन्होंने बही नाम क्यों लिखा पता नहीं। और एक मैसेज मुझे बिहार से दिख रहा है और नाम फिर भी नहीं लिखा है, परवेज महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और इन सब ने बड़ा इंसिस्ट किया मेरा नाम ले लीजिए, लीजिए आपका नाम हमने ले लिया। लेकिन हाँ, अब आपका इंतजार खत्म, बॉलीवुड सरताज हमारे साथ हैं और वो अपना नाम खुद स्वयं अपने आप बताएंगे। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं आप?
1: हाँ जी मैम, बबीता जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ।
0: अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: नमस्कार जी।
0: तो अर्चना जी, क्या करती हैं आप और कितना सुनती हैं आप आकाशवाणी रेनबो और कैसे बॉलीवुड सरताज में आना हुआ आपका?
1: मैं कुछ दिनों से रेगुलर सुनती हूँ और मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ये बॉलीवुड ट्रेल।
0: हाँ।
1: और उसके बाद रेडियो डॉक्टर।
0: ओके, दो आपके फेवरेट शोज हैं, है ना?
1: जी।
0: रेगुलर सुनती हैं आप शो?
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छी बात है। और आपको इसका मतलब काफी कुछ जानने समझने में इंटरेस्ट है ना? अलग
1: बहुत अच्छा लगता है। घर हाँ। के काम अच्छे से हो जाते हैं और म्यूजिक से मेरा लगाव बचपन से ही है। गाने सुनती भी हूँ और गाती भी रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ और मजे से काम करती हूँ।
0: वाह, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपना काम करते रहें और खुश होकर काम करें, गाते गुनगुनाते काम करें, और यही रेडियो का मकसद होता है। और साथ में इन्फॉर्मेशन आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, आपके देश में जो कुछ भी हो रहा है, है ना? तो चलिए, आकाशवाणी रेनबो सुनकर आपने बताया कि किस तरह से अपना टाइम आप व्यतीत करती हैं, बहुत अच्छा लगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, आज आप बनी हैं बॉलीवुड सरताज, कैसा लग रहा है बाद में पूछूंगी, पहले मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब एक बार आप ऑफिशियली दे दीजिए। मैंने पूछा था कि अली फजल जो कि मिर्जापुर द मूवी में भी आ रहे हैं, सीरीज में तो थे ही, उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम
1: हाँ जी
0: मिर्जापुर द मूवी में क्या है?
1: जी, उनका नाम है गुड्डू भैया।
0: गुड्डू भैया और गुड्डू पंडित, ये नाम है जिसके नाम से वो फेमस है और काफी इस नाम की चर्चा है पूरे के पूरे मिर्जापुर सीरीज में। अब मूवी आएगी तो मूवी में ऑफ कोर्स क्योंकि लीड रोल है तो होगा ही, है ना? तो काफी फेमस कैरेक्टर। आपने देखी हुई है ये सीरीज?
1: नहीं, मैं टीवी सीरीज देखती रही, लेकिन मैं नॉलेज रखती हूँ। अब टीवी से मेरा नाता टूट गया है जब से मैं रेडियो से जुड़ी हूँ।
0: अरे वाह, मतलब रेडियो आपको ज्यादा इजी लगता है सुनना और
1: ज्यादा बहुत अच्छा लगता है। पॉकेट में रेडियो न्यूज ऑन एयर पे सुनती हूँ और काम करती हूँ, जहाँ जाती हूँ चलता ही रहता है रेडियो मेरा न्यूज ऑन एयर पे।
0: अर्चना जी, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आज के बॉलीवुड सरताज बनने के लिए और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से दिल तक जुड़ी रहे आकाशवाणी रेनबो से।
1: जी जरूर।
0: चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी,
0: कुछ कहना चाहेंगी? और
1: जी मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि रेडियो के इतने

0: अच्छे प्रोग्राम सुनती हूँ, कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, खास करके रेडियो डॉक्टर और ये बॉलीवुड दोनों ही मेरे मतलब ये फेवरेट टॉपिक्स हैं।
1: थैंक यू सो मच। इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, ठीक है?
0: धन्यवाद
1: बविता जी, बाय।
0: थैंक यू।
1: इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी कहना होगा चाचा बाबाई, और आप सब अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपने डेली के काम भी और रेडियो भी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को

को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: There are several such trees and plants acting as street corners and resident landmarks that are actually ancient and rare species. Do you have a story about such a tree from your younger days? Let us know at 9868107070 on WhatsApp and allow us a quick break.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: मेनी ऑफ अस हैव एनकाउंटर्ड तुलसी श्रब्स थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड्स। इन एडिशन टू बीइंग ए होम रेमेडी फॉर सेवरल इलनेसेस, it also purifies air quite well. So if you can, try growing some in a pot at home. Moving on, we have No More Rain by Kylie Minogue.

0: What's with the party music, you ask? Well, full-grown trees are also a great venue for garden parties and evening drinks breaks. So, plan with your friends, turn up the radio, and tell us about the garden parties you've been and the trees and plants you think there are in vogue at 9868107070. We'll be back after a short break.
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: The Northern Ridge, Sanjay Van and Asola Bhatti are Delhi's lungs and have enabled us, believe it or not, to become the world's second most bird-rich capital city. Do you have any memories of exploring the woods? Tell us at 9868107070 as we take one last quick break.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या
2: अरे बिल्कुल इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी ओहो यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा हाँ भाई ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर
0: As we near the end of this hour, we hope that you now know more about trees than you did before. So if you can, participate in your nearest plantation drive or water the shrubs near your place. On that note, here's Wildflower by Billie Eilish.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका

अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: सुदूर रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 102.6 FM रेनबो पर। और आज हेल्पलाइन में हमारा जो टॉपिक है वो हम सभी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सुनना भी एक कला है। आज के समय में इस कला को ना लोग भूलते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी होता है। व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, इसी टॉपिक पर रहेगा आज का हमारा रेनबो हेल्पलाइन। और हमारी एक्सपर्ट है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जस किरण गिल। बहुत बहुत स्वागत है जस किरण।
2: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन का है जस किरण। हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और इसी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो है सुनना। हम दूसरों को अच्छे से सुने, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
2: जी मैम, जैसे आपने बोला कि कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें बोला भी जाता है और सुना भी जाता है। बोलने और सुनने के बिना एक कॉन्वर्जेशन कम्प्लीट नहीं होता है। पर हो क्या रहा है कि हमेशा से बोलने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बल्कि ये अज्यूम किया जाता है कि सुनना तो हमें आता है। सुनने में क्या है, सुनने में क्या सीखना है? कान में आवाज जा रही है मतलब सुन रहे हैं, जबकि ये समझने की जरूरत है लिसनिंग और हियरिंग में बहुत ज्यादा फर्क है।
1: लिसनिंग एक अलग टर्म है और हियरिंग एक अलग टर्म है।
2: जी बिल्कुल। अब कान में सड़क पे

0: जाते हैं हजारों आवाजें कान में जाती हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, तो कान में आवाजें जा रही हैं, मतलब कि वी आर हियरिंग राइट। पर लिसनिंग का मतलब है कि आवाज को तो सुनना बट उसके साथ साथ समझने की कोशिश करना कि कोई कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, उसके पीछे मतलब क्या है, वो जानने की भी कोशिश करना एक लिसनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
1: बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने जसकिरण लिसनिंग का। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिसनिंग जो है कला है, इट्स एन आर्ट। तो इसी बारे में आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे और सीखेंगे आपसे। तो श्रोता, अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 102.6 FM रेनबो के साथ। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 0112342108 एंड व्हाट्सएप नंबर इज 9868107070। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे हमारी जो यंग, वेरी प्रोफेशनल एंड डायनेमिक गेस्ट है जसकिरण गिल के पास।

0: रवि चौहान की आवाज में फिल्म रॉकस्टार का गाना हमने सुना एंड ये चॉइस थी जसकिरण आपकी। तो जसकिरण, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, तो व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लिसन?
1: देखिए, आजकल कोई सुन नहीं रहा है और इससे जैसे आपने पहले बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़ाइयां झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई अपनी मन की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है लोगों को। तो डिजिटलाइजेशन जैसे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के एज में हम रह रहे हैं, हमेशा फोन हमारे हाथ में रहता है, नहीं तो लैपटॉप खुला रहता है, हजारों तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर होती हैं और हमें परेशान कर रही होती हैं, बट हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है लिसनिंग, किसी को सुनना या किसी को वो स्पेस देना कि वो हमसे बात कर पाए।
0: जसकिरण, हमारा अगला जो सवाल है आपसे वो ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ पीपल नॉट लिसनिंग एनफ?
1: जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारा एक बेसिक ह्यूमन नीड है और हर ह्यूमन बीइंग वी वांट लव,

0: वी वॉन्ट टू बी वैल्यूड, राइट, कि हमारी भी कदर हो, वैल्यू महसूस करी जाए. तो ऐसे ही हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए. शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा. और ज्यादा से ज्यादा लोग अनसुना महसूस कर रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है. उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है, उसके साथ साथ लोग शट डाउन कर लेते हैं, मतलब किसी से बात ही नहीं करते, सब कुछ अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको कई बार मानसिक संतुलन भी उनका खराब हो जाता है. लड़ाइयां झगड़े बढ़ते हैं, पेरेंट्स को लगता है बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, हस्बैंड को लगता है वाइफ नहीं सुन रही है, वाइफ को लगता है हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं. हम किसी कॉरपोरेट में प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, लगता है बॉस हमारी बात नहीं सुन रहा है, बॉस को लगता है भाई मेरी टीम ही बात नहीं सुनती है. तो हर तरफ हो क्या रहा है एक्चुअली में, सब लोग बोल रहे हैं, हर तरफ से टॉकिंग हो रहा है, उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, और हमें लगता है कि हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ है, बट एक्चुअली में उसमें कोई लिसनिंग नहीं हो रहा है. इसलिए हम किसी को समझ नहीं पाते हैं, इससे और लड़ाइयां बढ़ती है. अरे तूने मुझे बोला तो ये बोला कैसे, लड़ाई बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, तनाव बढ़ता है. तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो विच आर देयर बिकॉज पीपल आर नॉट लिसनिंग एनफ.
1: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे कि हम इनकी बात नहीं सुन रहे. हेलो
2: सुजाता जी, नमस्कार.
1: नमस्कार, बोलिए.
2: हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते. धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ.
1: धर्मवीर जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच.
2: जो आप लोग हमें जो नए नए कार्यक्रम और नई नई जानकारियां सुझाते हैं और समझाते हैं, बहुत बहुत इसके लिए हमारे आपको धन्यवाद, क्योंकि हमें नई नई जानकारियां मिल पाती हैं.
1: थैंक यू सो मच. कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड?
2: जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हर आदमी अपने अपने अंदर ही गमों में जीता है, अपनी अपनी परेशानियां हैं, सब अपनी अपनी परेशानियां मोबाइल के साथ ही मतलब बांटते हैं, बस कोई परेशानी ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और अपना कार्यक्रम करने शुरू होते हैं. ये मैंने खुद महसूस किया है कि अगर अपने को कोई टेंशन है, दिमाग में कोई परेशानी है, तो हम सबसे अच्छा जरिया सुनते हैं अपना अच्छा कोई सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, जिससे अपने आराम से माइंड से सारी टेंशन खत्म हो जाती है. इसके लिए कोई दबाव तो है नहीं. मैं एक्सपर्ट से यही पूछना चाहता हूँ, मैडम नमस्कार, इसके लिए कोई ऐसा कोई दवाई है कि जो हम दवा भी खा सकते हैं कि आराम से अपनी टेंशनें दूर कर लें? आपने बताया कि हर आदमी अपना बच्चा भी हमारी बात नहीं सुनता, तो वो बच्चे को हम जबरदस्ती कह तो नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल का उनका अपना फील्ड है. अब पहले के समाज जो था वो अलग था, कि सामाजिक कार्यों में जाते थे लोग, आजकल नाटक वगैरह देखने जाते थे. तो समाज के साथ जुड़ना भी तो एक जरिया है, सबके साथ समाज के साथ रहना भी एक अच्छा एक अपना समय काटने वाली बात है, क्योंकि आजकल समाज के साथ कट चुके हैं लोग.
1: जी जी. तो धर्मवीर जी, आपने तो इतनी सारी बातें हमें बता दी, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने को रह गया है. आपने क्वेश्चन ही आपने आंसर बता दिया हमको. लेकिन जो आपने पूछा है कि कोई दवा भी है क्या, तो जसकिरण व्हाट वुड यू लाइक टू से?
0: नमस्ते धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ने के लिए और आपके सवाल के लिए. देखिए, आई विश मैं आपको कोई ऐसी दवा होती और जो मैं आपको बता पाती, पर जैसे सुजाता जी ने बोले कि आपने जवाब भी खुद ही दे दिया है, और ऐसी कोई दवा तो नहीं है, पर यही है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम अच्छा सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी.
1: तो धर्मवीर जी, थैंक यू सो मच अपने अच्छे विचार रखने के लिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. तो जसकिरण, यहाँ पर लगता है कि एक ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद हम लौटेंगे.

0: स्वागत है आपका रेनबो हेल्पलाइन में। तो जसकिरण, आपने ये बताया कि परिवार में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम एक दूसरे को जब सुनना नहीं चाहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को सुनना नहीं चाहता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं सुनना चाहते, हम ऐसा प्रतीत होता है, पेरेंट्स बच्चों को नहीं सुनना चाहते और बच्चे जो है पेरेंट्स को नहीं सुनना चाहते, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक मैसेज हमें मिला है मनोहर लाल गांधी जी का, गाजियाबाद से लिखते हैं कि छोटे अगर बड़ों को कोई काम की बात या कोई मजाक करते हैं तो बड़े अपने आप में खुद को समझदार मानते हैं, छोटों की बात अनसुनी कर देते हैं। हो सकता है छोटे अगर बात कुछ कह रहे हैं तो बड़ों के फायदे के लिए ही कह रहे हो, लेकिन जो बड़े हैं ना वो अहम में रहते हैं, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए?
1: देखिए, जैसे आपने अपने प्रश्न में ही बोला है कि बड़े अपने आप को बड़ा मानते हैं और समझदार मानते हैं, बहुत दफा क्या होता है कि हमारी मान्यता, हमारी assumptions एक बहुत ही बड़ा बैरियर एक्ट करती हैं हमारी लिसनिंग को लेके। हम समझते हैं, और ये हमारा नजरिया है, हम समझते हैं कि हम बड़े हैं, हम समझते हैं कि हम समझदार हैं। तो जब हम ये समझ के साथ या ये मान्यता के साथ हम किसी को सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो बच्चा हो, तो आप ये देखेंगे कि आप पहले ही आपकी लिसनिंग को तो बंद कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपको बच्चा कुछ कहना भी चाहेगा तो आपकी जो मान्यता है वो बीच में उसके आड़े आएंगी। तो बहुत ही जरूरी है कि अपनी मान्यता को, अपनी assumptions को साइड में रख के बच्चों के नजरिए से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि अगर वो कह रहा है तो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और बच्चे को भी कैसा लगता है जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं या जब हम उन्हें बोलते हैं कि वो मैं तो बड़ा हूं, तुम मुझे ये कैसे बोल सकते हो। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उनके नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और अपनी मान्यताओं को हटा के सुनने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कनेक्शन बच्चों के साथ भी बना पाएंगे।
0: और यहाँ पर एक बात जो मैं एक्सपीरियंस से अपने कहना चाहूंगी जसकिरण, वो कि कई बार हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत सी बातों को लेकर जागरूक हैं, जैसे कि स्वच्छता को लेकर या फिर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने को लेकर, जैसे कि मेट्रो में जब दरवाजे खुलते हैं तो बहुत सारे बड़े जो है ना अफरा तफरी एकदम से दे पुश इन, तो बच्चे ऐसे में कहते हैं कि मामा प्लीज लेट द पीपल कम आउट, कि आप प्लीज जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, या फिर कागज का टुकड़ा यहाँ फेंक दिया, कूड़ा यहाँ फेंक दिया। लेकिन बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि क्लीनलीनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तब ऐसे वक्त बच्चे जो है पेरेंट्स को बोलते हैं कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो ये सब बातें हमें बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अगर हम उनकी केयर करें, हम उन्हें उनकी लिसनिंग करें प्रॉपरली।
1: जी बिल्कुल सुजाता जी, जितना हम बोलने से देखिए हम कुछ हद तक सीख सकते हैं, अगर आपको सच में किसी के बारे में कुछ सीखना है या किसी चीज के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में कुछ सीखना है तो जब तक आप उसकी सुनेंगी नहीं आप सीख नहीं पाएंगे।
0: एक कॉलर है, हेलो।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
2: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है अनवर जी आपका।
2: मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को और हमारे श्रोता है विशेषकर धर्मवीर जी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ।
0: जी
2: मैडम, मैं अभी आप दोनों की बातें

0: सुनना था, मैं आप लोगों से 100% आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। सही बात है कि हम बच्चों की भी बात सुने और उनकी भी इज्जत करें और जो मान मर्यादा है बच्चों को वो हम दें। अब हमारी वाइफ है, मेरी बेटी ने एक दिन मेरे पास फोन किया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ, तो मेरी बेटी ने फोन किया कि पापा स्कूल से टीम जा रही है और बैडमिंटन का खेल होगा, हम उसे भाग लेना चाहते हैं और मम्मी मुझे मना कर रही है कि मत जाओ, तुम बड़ी हो चुकी हो, क्लास 9 से पहुंच चुकी हो। मैंने कहा वाइफ को बिल्कुल गलत बात, बेटी है अब बड़ी हो रही है, होने दो, अब उसके अंदर जो शौक है उसको उभरने दो। मैंने बेटी को बोला जा बेटी खेल के आ, और वो गई और वो अच्छा प्रदर्शन करके आई वहाँ। तो हमें बच्चों को रोकना नहीं चाहिए और उनकी भी बात को सुनना चाहिए। एक सवाल तो मेरा ये है, दूसरा सवाल मेरा ये है मैडम कि आज के डेट में हर शख्स मोबाइल में लगा है, चाहे फैक्ट्री हो, बाजार हो, कहीं भी हो, चार लोग अलग अलग बैठ जाते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आखिर हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि मोबाइल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम हो और जो पहले जो गाँव में एक जगह बैठकर लोग आपस में बात करते थे, उससे मोहब्बत बढ़ती थी, इत्तेफाक बढ़ता था, क्या किया जाए कि फिर से वो पहले वाला माहौल कायम हो।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने
2: जी। अनवर जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी बेटी को सुनने और समझने की कोशिश की और उनको प्रोत्साहन दिया कि वो खेल पाए। देखिए कई बार हमें बच्चों को किसी बात से मना भी करना पड़ता है, पर बहुत जरूरी है कि कैसे मना किया जाए वो सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे और हम उनकी बात को और उनकी भावनाओं को भी समझ पाए। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि आजकल, आप सही कह रहे हैं कि मोबाइल पे सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग मोबाइल पे 24 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। देखिए पहले जैसा माहौल बने ये हम सब चाहते हैं, पर असलियत यही है कि बनना मुश्किल है। पर जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एफर्ट ही कर सकते हैं कि कई बार जैसे आपका दोस्त आपसे बात करने आता है तो आप मोबाइल पे हैं, मैसेज कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम उसको बंद करके उसको साइड पे रख दें, बजाय कि हाथ में मोबाइल है और दोस्त को बोल रहे हैं हाँ बताओ किस बात में बात करनी है या हाँ क्या हाल चाल है, उसको साइड पे रखेंगे, हाँ भाई बताओ अब मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, बताओ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आप देखेंगे कि उससे इतना, क्योंकि लोगों के ऐसी चीजें मिलती नहीं है कि कोई उनको इतनी अटेंशन दे रहा है, इतना ध्यान रह रहा है, इसी बात से लोगों को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये जरूर कर सकते हैं, रात को खाने पे बैठे हैं तो मोबाइल वहां पे ना रखें, ताकि एक दूसरे से बात कर सके, पूछ सके कि दिन कैसा निकला, कैसा महसूस कर रहे हो। तो अपनी तरफ से ये एफर्ट हम जरूर कर सकते हैं। आप देखिएगा कि घड़ा देखिए बूंद बूंद से भरता है, एक करेगा कल, दो करेंगे, चार करेंगे, तो धीरे धीरे ही कोई भी चेंज जो है वो आ पाएगा।
1: शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जसकिरण, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर लिसनिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों कम्युनिकेशन में, तो व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट टॉट लाइक रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज टॉट।
2: जी सुजाता जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें स्कूलों में रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तो सिखाया जाता है पर लिसनिंग नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि इसको इतना जरूरी नहीं समझा जाता। ये अजम्पशन बहुत स्ट्रांग है कि सुनने में क्या है। अब देखिए बच्चे क्लास में, अभी आप भी स्कूल गए होंगे, हम सब स्कूल गए हैं, तो जैसे क्लास में एक टीचर अध्यापक जो है हमेशा बोले कि देखते सबसे पहले जवाब कौन देता है, या बच्चे की तारीफ करेंगी, अरे बच्चा यू आर सच अ गुड स्पीकर, इतनी अच्छी स्पीच दी तूने, तुमने इतना अच्छा जवाब दिया। तो हमेशा जो है हम बोलने वाले की तारीफ करते हैं, स्कूल में भी बच्चों की उनकी तारीफ होती है जो अच्छा बोलते हैं, पर उनकी तारीफ कभी नहीं की जाती, अरे बेटा तुम अच्छे लिसनर हो, तुम अच्छा सुनते हो। तो शुरू से ही एक यू नो लिसनिंग हैज ऑलवेज बीन आउट ऑफ द इक्वेशन, आउट ऑफ द पिक्चर। तो हमारे मन में भी, बच्चों के मन में भी हमेशा रहता है कि शायद सुनना तो अच्छा, सुनने की भी ट्रेनिंग होती है, सुनना भी सीखना जरूरी है। तो ये जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समस्याएं जितनी बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं। आजकल आप देखिए कॉर्पोरेट्स में भी सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो गुड लिसनर्स की है, क्योंकि कोई बात सुनना नहीं चाहता। और बहुत सारे कॉरपोरेट्स बहुत सारा पैसा लूज कर रही हैं ऑन अ ईयरली बेसिस, क्योंकि लोग जो है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है. मीटिंग में बात कुछ होती है, करते कुछ है, तो सुनते नहीं है, समझते नहीं है. तो लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है और बहुत ही जरूरी हो गया है कि लिसनिंग को स्कूल्स का कॉलेजेस के करिकुलम में शामिल करना चाहिए. और जैसे कि हम स्पीकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, रीडिंग

0: राइटिंग स्पीकिंग सिखाते हैं, वैसे ही लिसनिंग को भी बच्चों को सिखाना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात की। और जसप्रीत, मुझे एक बात याद है कि जब हम स्कूल में थे और अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है और बहुत ज्यादा चुप रहता है तो उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहे, कुड देयर बी सम प्रॉब्लम। मुझे याद है मैं बचपन में थोड़ी सी क्वाइट थी, बहुत कम बोला करती थी, तो पेरेंट्स को लगता था ये बोलती नहीं है, ये बच्चा बोलता नहीं है। तो आपको लगता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट होना चाहिए कि हो सकता है बच्चा सुन रहा है।
0: जी बिल्कुल,
1: दैट्स आल्सो अ गुड हैबिट।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके सीखते हैं, पर हम क्या है उनको वो मौका ही नहीं देना चाहते, ये देखने के लिए हम वेट भी नहीं करना चाहते कि शायद ही बच्चा अच्छा ऑब्जर्वर और शायद ही सुनता अच्छा है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर रहा है, शायद वो बच्चा ज्यादा सीख रहा है। हम उसको प्रॉब्लम वो लेबल कर देते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है भाई, इसका इलाज होना चाहिए। तो बच्चे को भी लगता है कि शायद बोलने वाला ही अच्छा समझा जाता है।
1: एक कॉलर है, इनकी बात सुने। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी।
2: हाय सुजाता जी, मैं धर्मवीर। एक सवाल मेरे मन में अभी आया ना कि स्कूल में बच्चों को भाषण देना क्यों नहीं सिखाया जाता है? शुरू से ही बच्चों को अगर खड़े होकर भाषण देने कोई भी लाइन दे दी जाए, चार लाइनें, दस लाइनें, क्योंकि जिंदगी में मैंने लाइफ में एक ही बार भाषण दिया था, वो भी अचानक ही किसी ने मुझे खड़ा कर दिया, तो मुझे क्या बोलना मुझे ये नहीं पता था, पर हमने भाषण दिया, बात करी अपनी रखी। तो बच्चों को अगर शुरू से ही अगर भाषण देने की जो एक टेक्निक है जो शुरू से आ जाएगी।
1: जी जी, तो ये तो बात हुई कि बोलना सिखाया जाए, भाषण देना सिखाया जाए। चलिए, ये भी आपकी बात स्वीकार करती है, साथ में उस भाषण को सुनने की कला भी आनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: तो चलिए धर्मवीर जी, थैंक यू सो मच एक बार फिर से अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर एक ब्रेक हम लेंगे।

0: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। हमारी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट गेस्ट हैं जसकिरण गिल, हमारे साथ मैं हूं सुजाता रथ, और टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, सुनना क्यों जरूरी है आज की लाइफ में। तो जसकिरण, एक व्हाट्सएप मैसेज है, दिस इज फ्रॉम गुवाहाटी हर्ष की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि इफ यू कैन गिव सम टिप्स टू बिकम अ बेटर लिसनर, हाउ कैन वन बिकम अ बेटर लिसनर।
1: जी हर्ष, बहुत ही धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, बोलना हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं, और पूरा लाइफ लग जाती है तब भी हम परफेक्ट स्पीकर नहीं बन सकते। इसी तरह से बहुत ही जरूरी है अभी से एफर्ट डालना कि हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर। और सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्ट By listening to your own self, अपनी सुनना सीखें और acknowledge करें कि देखिए मुझे अपनी listening skill को improve करने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी को कोई बीमारी भी होती है और अगर वो उसको दवा दो भी, जब तक वो acknowledge नहीं करता उसको दवा की जरूरत है तब तक वो नहीं खाएगा। इसी तरह से पहले एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि मुझे ये सीखने की जरूरत है। जब आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको कैसा महसूस होता है, या आपकी क्या लिसनिंग हैबिट्स हैं, लिसनिंग पैटर्न्स हैं, क्या आप टोकते बहुत ज्यादा हैं कोई बात कर रहा होता है तो, या क्या आप बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, किसी ने आपको कोई बात बताई, समस्या बताई, आप जल्दी से जल्दी उसका हल देने शुरू कर देते हैं, तो या फिर आप कोई अपनी बात खत्म करता भी नहीं है और अपने दिमाग में उसका रिस्पांस तैयार करना शुरू कर देते हैं, या आप कोई बात कर रहा होता

0: तो आपका ध्यान उनके कपड़ों पे होता है, अरे यार इसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो बात क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो किस तरह के आप लिसनर हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी लिसनिंग हैबिट्स को, अपनी लिसनिंग गैप्स को, अपने लिसनिंग पैटर्न्स को जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तब जरूरी है उस पर काम कर पाना और सीखना, किसी तरह की ट्रेनिंग लेना कि अपनी लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें बहुत सारे टूल्स सिखाए जाते हैं कि कैसे किसी की बात को समझना चाहिए, कैसी अपनी जो हमारे बहुत सारे देखिए बायसेस और जजमेंट्स होती हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो खराब होते हैं, या क्योंकि बच्चे हैं वो हमें कुछ नहीं बता पाते, बच्चे समझदार नहीं होते हैं। तो हमारी बायसेस क्या हैं, आपकी बायसेस क्या हैं, उनको समझिए और कैसे आप अपने नजरिए को साइड पे रख के दूसरे के नजरिए से कैसे बात को समझ सकते हैं उस पे काम करना शुरू कीजिए।
1: सतीश कामले फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र, इन्होंने लिखा है कि मैं इस वक्त अपना काम कर रहा हूं, आई एम राइटिंग माय ट्यूटोरियल्स एंड व्हाइल राइटिंग आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। आज आप एक्स्ट्रा 2 घंटे प्रोग्राम कीजिएगा, इज लाइकिंग इट सो मच। तो थैंक यू सो मच सतीश फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र। और एक मैसेज और आया है सीमा गांधी का गाजियाबाद से, घर में नई बहू आती है लेकिन अक्सर कई घरों में सास बहू को बात बात पर टोकती है, बेटे

0: सतीश फ्रॉम परभनी महाराष्ट्र। और एक मैसेज और आया है सीमा गांधी का गाजियाबाद से। घर में नई बहू आती है लेकिन अक्सर कई घरों में सास बहू को बात बात पर टोकती है। बेटे को पहला स्थान और बहू को बात का स्थान देती है। बहू अगर मन की बात कहती है तो पति से। ऐसे में सास और बहू को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम आप? जसकिरण जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये समस्या तो हर एक रिश्ते में है, हर एक रिलेशनशिप में है आजकल, तो प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। एक तो सास बहू के केस में हजारों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक इनमें से ये भी हो सकती है कि बहू और बेटी में जो आज भी हम जितना भी चाहें पर वो फर्क कहीं ना कहीं आ जाता है या हम ले आते हैं। तो जब हम बेटी की बात सुनने की कोशिश करेंगे, वैसे शायद हम बहू की नहीं सुनते हैं या फिर उनके नजरिए से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने आप को साइड में रख के, मैं सास नहीं हूं, क्या मैं इसको कैसे, इस लड़की को इंसान टू इंसान कॉन्वर्जेशन कर सकती हूँ, ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे कनेक्शन बना सकती हूँ, कैसे इसको और जानने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मुझे 10 चीजें इसकी नहीं पसंद, क्या मैं उन 10 चीजों को साइड पे रख के इसको और जानने की कोशिश कर सकती हूँ या ये समझने की कोशिश कर सकती हूँ अगर इसने ये बोला है तो इसके पीछे इसका क्या मतलब था ये बोलने का, या मैं भी अपने आप को कैसे सुधार सकती हूँ ताकि ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके। तो बहुत ही जरूरी है। देखिए हाँ, हम बोलते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, पर ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखना विदाउट लिसनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू लिसन टू द अदर पर्सन, उसका कोई फायदा नहीं है। समझेंगे तभी ट्रस्ट आएगा, समझेंगे तभी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा।
0: अनुभा का मैसेज लेते हैं। एज अ पेरेंट व्हाट कैन आई डू टू बी अ गुड लिसनर व्हेन माय चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टैंट्रम?
1: जी अनुभा जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। देखिए वही बात आ जाती है कि अगर टेंट्रम भी थ्रो कर रहा है तो बजाय हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने जिद की तो हम या तो उसको धमकाने लग जाते हैं या हम उसको लालच देते हैं, अरे उठ जाओ ऐसे मत करो, मैं तुम्हें देखो चॉकलेट ला के दूंगी, या फिर हम उसको झिड़क देंगे कि ऐसे करोगे तो एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर फिर से ये किया तो। तो क्या होता है कि हम बच्चे कि ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो बच्चा उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो बजाय कि रोकना टोकना शुरू कर दें या उसको लालच कर दें या उसका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दें, जो कि हम बहुत बार करते हैं, तो उससे क्या है कि जो बच्चे के अंदर फीलिंग्स है वो वहीं दबी रह जाती है, उसको आउटलेट नहीं मिला। तो बहुत जरूरी है कि एज अ पेरेंट उसको एक्नॉलेज करे कि देखो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, या तुम्हें कैसा लग रहा है कि अगर हम ये नया खिलौना नहीं ले रहे हैं या तुम्हें नया खिलौना लेके देंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। तो उसको जानने की, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे बजाय कि अरे यार ये तो फिर से शुरू हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, एक तो वक्त नहीं होता है कि इतना कौन सुने, इसीलिए सुनना मुश्किल है और बोलना आसान है।
0: और अब वक्त है एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने का। और ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारा, जसकिरण मेरा और आप सभी का, रेनबो चैनल 102.6 पर ये जारी रहेगा, लेकिन आफ्टर दिस वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: तो इस बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के बाद लौटते हैं रेनबो हेल्पलाइन में. और जसकरण, जैसे कि हम कोई भी बहुत अच्छा म्यूजिक जब प्ले हो रहा होता है या कोई कॉन्सर्ट चल रहा होता है तो हम बिल्कुल खो जाते हैं उसमें. तो कहते हैं कि कोई भी जो संवाद है वो एक तरफा नहीं होता है. अगर मंच पर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, भले ही म्यूजिक का चल रहा हो, डिस्कशन का चल रहा हो, एनीथिंग, तो जो ऑडियंस होती है उसको भी एक अच्छा लिसनर बनकर एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे उसके एक्सप्रेशन से हो. तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल. कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से होता है. अगर कोई बोले जा रहा है और दूसरा आदमी उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ. या फिर अगर वो कुछ बोल रहा है तो दूसरा आदमी कुछ भी और बोल रहा है विदाउट उसकी बात सुने, तो फिर वो भी एक कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ. दोनों ने कुछ ना कुछ बोला और दोनों बोल के चले गए और हमें लगता है कि हमने कॉन्वर्जेशन किया है. तो कॉन्सर्ट में हम जाते हैं तो बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, जैसे मैं पहले बता रही थी कि आज मुझे इसको सुनना है, तो हम उसमें खो जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें. और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज इसमें भी होता है कि कई बार जैसे बच्चों का बहुत होता है कि लेक्चर बोरिंग है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको कैसे सुने. या कोई स्पीच है किसी मिनिस्टर की या कोई ऐसी चीज हमें सुननी पड़ रही है जो कि हमारी मजबूरी है, घर पे कोई आ गया जिसकी बात में हमें नहीं इंटरेस्ट है, पर हम उसकी बात कैसे सुन सकते हैं, क्या सुन सकते हैं. पहले तो यही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि हाँ भाई हम उसकी बात सुन सकते हैं. कैसे हम उस बात को भी एक नई क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा के साथ अप्रोच कर सकते हैं कि भाई इसमें मैं आज क्या नया सीख सकता हूं. और ये एक्नॉलेज करने के बाद कि शायद मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, शायद मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, शायद मुझे ये अच्छे से नहीं समझ आए, पर फिर भी मैं अगर ध्यान लाके इसको सुनने की समझने की कोशिश करूं तो क्या नया मैं इसमें से सीख सकता हूं, ये बहुत जरूरी है.
0: जैसे कि मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है. हम कोई कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है तो हम दाद दें, वाहवाही करें और बीच में बातचीत न करें, मोबाइल जो है साइलेंट रखें, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं. जी एक कॉलर की बात सुन लेते हैं. हेलो हेलो
2: हेलो.
0: हाँ जी
2: हेलो
0: हेलो. हाँ जी बोलिए.
2: मैं रवि जोशी मेरठ से बोल रहा हूँ.
0: हाँ रवि जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए.
2: फिर बारिश हुई तो उसमें टेम्परेचर डाउन हो गया, तो मेरा 12 साल का बेटा है वो स्कूल जाता सुबह 9 बजे. मैंने उससे कहा भी तू गुनगुने पानी में नहा ले, ठंडे पानी में मत नहा. बोला नहीं पापा मैं तो जो ना ताजे पानी में नहाऊंगा, आप बूढ़े हो गए आप नहाइए. अब देखिएगा इतना डिफरेंस. उसके बाद भी स्कूल चला गया, फिर वो जब वापस आ गया आज अभी सुबह अभी वापस आया तो छींके मार रहा. तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा जब टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आ जाता है तो वायरस जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं. वो थोड़ा समझा इस बात को. तो इज इट दिस कम्युनिकेशन गैप.
1: रवि जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए. आपको क्या लगता है रवि जी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वेयर डू यू सी द गैप हियर?
2: मैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए बोला था कि इतना जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं जो है वो उसके शरीर को थोड़ा सा परेशान करेगा.
1: जी
2: जी
1: जी. क्या आपको लगता है कि आपका जो अप्रोच रहा है, जैसे आपने बोला कि उसको मैंने बोला कि तू ठंडे पानी से मत नहा, तो आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं? जैसे आपने उसको मना करते हैं हम बच्चे को किसी चीज से, तो बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा वो चीज जरूर करता है. तो जहां हम गैप की बात करते हैं, अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ट्राई कर सकता हूं, आपको लगता है कि आपको उससे मदद होगी?
2: यस ऑफ कोर्स. अब यही है ना कि अब उसको जब छींके आने लगी तो मैं उसको समझाया, मैंने कहा ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है ये वायरल जो है आ गया है आपके अंदर, वो छींके मार रहे हो आप.
1: जी
2: तो थोड़ा थोड़ा समझ गया इस बात को भी. हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं पापा.
1: जी जी
2: वही है मतलब कहने का कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये कहीं ना कहीं से जो है हम दोनों को ही परेशान करता है.
1: बिल्कुल
2: ये तो बात मानने की है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: थैंक यू रवि जी, आपने जो महसूस किया उसे हम तक पहुंचाया. थैंक यू सो मच.

0: और जसकिरण, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं लेकिन उनमें वही कॉमन बात है जो हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में कवर कर चुके हैं. मिसेस धर्मवीर भाटिया है रोहतक से, एंड हर्ष ने एक और क्वेश्चन भेजा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट नॉट जस्ट टू लिसन टू ईच अदर बट ऑल्सो टू अवर बॉडी.
1: जी हर्ष जी, बहुत ही जरूरी है. देखिए, हम लोग अपने आप को आजकल, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल टाइम है, हमारी जॉब्स इतनी स्ट्रेसफुल हैं, तो हम अपने आप को पुश करते रहते हैं और बहुत सारे केसेस में हम बर्नआउट जल्दी हो जाते हैं, या थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें लगता है कि अरे यार छोटी सी बात है, कुछ नहीं होता, अभी भी मैं ये कर सकती हूं. तो क्या है कि अगर हम बॉडी को नहीं सुनते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं. और बहुत ही जरूरी है कि अपनी बॉडी के साइंस जो हैं, हमें अपनी बॉडी हमेशा देती है, उसको रिकॉग्नाइज करके अगर हमें लग रहा है कि अरे यार अभी मुझे थकावट हो रही है, उसको इग्नोर ना करके बल्कि वहीं पे अपने आप को रोकें या कुछ रिलैक्स करने के लिए करें, ताकि फ्यूचर में जाके हमारी तकलीफ, हमारी दिक्कतें और ना बढ़ें. तो बहुत ही जरूरी है अपनी बॉडी को सुने. हम बाहर जंक फूड आजकल सब लोग खाना पसंद करते हैं. कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग एसिडिटी की गोली लेते हैं, फिर जंक फूड खाते हैं. अब उनको मालूम है कि मुझे जंक फूड खाने से एसिडिटी होती है, पर वही है कि अपनी बॉडी की ना सुनते हुए हम अपनी मनमर्जी करते हैं, जिससे कि देखिए नुकसान ही होता है आगे जाके.
0: तो पठानकोट से ज्योत्सना जी का मैसेज है कि उन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. और एक बात, दवा की बात किसी ने कही थी जसकिरण, तो मेरे मन में एक बात है कि जब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अगर कोई अच्छा श्रोता बनकर उन्हें समय दे तो ये उनके लिए एक मेडिसिन का काम करती है. यहां पर जो है लिसनिंग ये कितनी इम्पोर्टेंस है हम और आप महसूस कर सकते हैं. वो टूडी लाइक
1: जी, बिल्कुल सुजाता जी, मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ. देखिए, बड़े बुजुर्गों जो हैं वो ज्यादा लोनली इसीलिए फील करते हैं क्योंकि बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है. तो या फिर अगर वो कुछ कहना भी चाहें तो हम यंगर जनरेशन है या तो अपने फोन पे होती है, अपने कामों में होती है, सुना अनसुना कर देती है, तो उससे उनको खराब ज्यादा लगता है. बल्कि आप देखेंगे, हमने कई बार जो हम स्टोरीज सुनते हैं लिसनिंग की ट्रेनिंग के बाद, उसमें यही है कि कैसे कुछ यंगस्टर्स ने एफर्ट किया है अपना कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी दादी के साथ, दादा के साथ, जिसको कभी सुना नहीं था. इनको लगता था कि यार ये तो बहुत खड़ूस है, अरे ये सठिया गई है, कुछ भी बोलती है या फिर हमेशा गुस्से में रहती है, क्योंकि इनकी अब उम्र हो गई है. पर उसने इस बार ये ट्राई किया कि वो अपनी अप्रोच को कैसे बदल सकता है. दादी आज आप बात करो, मैं आपकी बात सुनूंगा. और उसकी दादी ने 1-2 घंटे इतना बात की है, दिल की पूरी बातें निकाली है, और वो रो पड़ी क्योंकि कितने सालों से उनको ऐसे किसी ने सुना ही नहीं था.
0: तो आई थिंक विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज आज का प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे. दिल दिया गल्ला सुनना भी बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच जसकिरण. हमारी एक्सपर्ट थी जसकिरण गिल, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट. व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक पर था हमारा हेल्पलाइन. टेक केयर, बाय बाय.
2: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया. इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है.
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली. और सबसे जरूरी, OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात. रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर. 102.6 आपके लिए.
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू.
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
8: अब ऐसे

जी और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जिम,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूं प्रोग्राम आशियाना। और दोस्तों, आज आशियाना में बात होगी हिसाब किताब की। भाई, हिसाब किताब जिंदगी में बहुत मायने रखता है, जैसे कि हर रिश्ता भी किसी न किसी हिसाब से जुड़ा होता है। कहीं प्यार का हिसाब नहीं रखा जाता तो कहीं छोटी छोटी बातों का लेखा जोखा रिश्तों में दूरियां ले आता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं उन रिश्तों की जहां दिल का हिसाब दिमाग के हिसाब से कहीं ज्यादा मायने रखता है।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे परिवार में हिसाब किताब की। क्या परिवार के सदस्यों से पैसों का हिसाब मांगना सही है या गलत? कई लोग कहते हैं कि रिश्तों में भरोसा होना चाहिए क्योंकि परिवार में तो भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब बात दोस्तों पैसे की आती है ना, तो कई बार छोटी सी जो गलतफहमी होती है वो भी रिश्तों में दूरियां ले आती है। तो क्या हिसाब मांगना अविश्वास है या फिर जिम्मेदारी निभाने का तरीका? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जवाब थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिसाब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप बच्चों में एक अच्छी आदत डालते हैं, साथ ही साथ एक ऑनेस्टी का भाव भी उनके अंदर आता है कि हिसाब किताब देना है तो कहीं से कुछ गोलमाल नहीं कर सकते।

जो साथी हो, दिल तो चुराया जा सकता है लेकिन हाँ हिसाब की गड़बड़ी जो होती है ना वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए रिश्तों में भरोसा तभी रहेगा बरकरार जब हिसाब भी होगा बिल्कुल साफ साफ। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के जो समय में ना कहीं बड़े परिवार हैं, छोटे परिवार भी हैं, खर्चे बढ़ गए हैं तो जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि चलो हिसाब किताब को साफ रखते हैं तो इसे बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साफ बातचीत अक्सर कर रिश्तों को बचा लेती है। तो इसी दिलचस्प मुद्दे पर हम कर रहे हैं आज ढेर सारी बातें आपके अपने प्रोग्राम आशियाना में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
5: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
6: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: तो पार्टी शुरू हुई है।
9: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
10: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
11: आज की रात मजा,
10: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
9: म्यूजिक मस्ती।
11: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
12: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
9: म्यूजिक मस्ती।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में बात हो रही है कि क्या परिवार के सदस्यों से हिसाब किताब मांगना सही है या गलत। दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल व्यू की तो हमने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल भी होता है जहां पर कोई हिसाब किताब के परे आपकी मदद करे। कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट मनी में से अगर कोई भाई या बहन मदद कर देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है उसके साथ। लेकिन कई बार हिसाब मांगने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर लहजा प्यार भरा हो तो बात आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन अगर शब्दों में ताना हो तो अपने भी पराए लगने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है पहले शब्दों को तोलने की और फिर बोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातचीत का लहजा हमेशा ही मायने रखता है। क्योंकि परिवार के जो रिश्ते होते हैं ना, वो एक छोटे से एक बारीक से धागे से जुड़े होते हैं, तो उन्हें प्यार से सहेजने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि आपके परिवार में आप हिसाब किताब को कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे जब बच्चों को किसी सामान को लेने के लिए भेजते हैं ना, तो कैसे उनसे हिसाब मांगा जाता है। सही बोल रही हूँ ना?

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप

अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
1: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
0: जी।
1: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
0: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
0: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं
2: पेड़ धरती के

0: श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा, हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी?
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
3: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ का

0: काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
1: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो।
2: अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधरी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
3: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
2: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुप्पा।
4: क्या भूल भूलकर बातें कर रहे हो दोनों?
2: कुछ नहीं,
4: जरूर मुझे बुद्धू बनाने की बात होगी। हाँ।
2: नहीं नहीं नहीं,
4: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
4: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: हुआ?
1: अरे चुब्बा, चुब्बा क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? हायरा, क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
1: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा,
0: सोचा अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। सोचा शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
1: वो...
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो,

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: अरे बाप रे, तेरे इस जंगल में शेर भी है क्या?
1: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
2: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
2: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
1: ये जामुन?
0: हाँ
1: चलो इसी को काट देते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
1: हाँ।
2: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
1: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
2: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
1: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा आई,
0: क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ
2: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
2: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा,
0: और नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
2: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा, चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो।

0: से, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: समझ गई है।
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे। फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।
0: सच्ची?

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और फिलहाल समय हो गया है 2:59 और 3 बजने को हैं। इसी के साथ ये समय होता है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है और उनके बारे में आप जान सकते हैं सीधे एक्सपर्ट से। तो फिलहाल बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद पूजा जी।
1: हमारे इस खास कार्यक्रम में अगर इस विषय से जुड़े आपके पास हैं कोई सवाल तो आप हमें करिए कॉल। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। श्रोताओं, आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, आज हम आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एलर्जी है, और आज ये इतनी आम क्यों हो गई है, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है।
2: धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एलर्जी क्या चीज है ये हमें समझना है। जब भी कभी कोई भी चीज के संपर्क में हमारा शरीर आता है, चाहे वो कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या बाहरी कोई कण है, तो ऐसे शरीर में ऐसे स्वरूप में हमारे शरीर से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस अक्सर हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे को बचाता है वो करता है। अगर ये इम्यून सिस्टम बाहरी चीज को पसंद नहीं करता, उसको समझ नहीं आता, तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ इन्फेक्शन के रिएक्शन करता है। अगर वो साधारण कण है, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर एलर्जी के कुछ लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एलर्जी जो है वो साधारण चीजें, जिन चीजों को नॉर्मल व्यक्ति को रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी इम्यून सिस्टम गलत समझ के उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, अधिक प्रतिक्रिया करता है, और जिसकी वजह से एलर्जी होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एलर्जी के कारण और प्रकार क्या है, और कोई कब और कैसे उसको पता चले कि वो एलर्जी का शिकार हो गया है।
2: जी जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलर्जी जो है वो एक कई सारे लक्षणों के साथ में प्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आंखों की एलर्जी के अंदर, जिसके अंदर आंख के अंदर खुजली होना, लालीपन होना, पानी आना, नाक की एलर्जी जिसमें आपने अक्सर कहते सुना होगा लोगों को कि छींके आती हैं, ज्यादातर मॉर्निंग के अंदर आती हैं, उसके बाद में फिर नाक बहना, नाक बंद होना, कई बार कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, खराटा लेते हैं, तो ये सभी चीजें एलर्जी की संभावनाएं हैं। इससे कई बार नींद भी प्रभावित होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, दिन के अंदर कई बार स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस के अंदर नींद जो है वो आती है, तो ये सभी एलर्जी के लक्षणों की वजह से उनके प्रभाव हैं। फिर सांस फूलना, जिसके अंदर काफी लोग इनहेलर, नेबुलाइजर की दवाइयां यूज करना, आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के समय पे पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और दिल्ली के अंदर तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि पॉल्यूशन, मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक पॉल्यूशन काउंट किया जाता है दिल्ली के अंदर, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा देता है। इसी के अलावा खाने पीने की चीजें, बच्चों में कुछ अलग कारण होते हैं खाने पीने की चीजों के जो एलर्जी के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं। कभी कभी पेट की समस्याएं, कभी कभी चमड़ी की समस्याएं, जैसे उभरे हुए छत के आ जाना और फफोले से, या कभी कभी एक्जिमा की तकलीफें हो जाना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एलर्जी कर सकती है,
1: अंदर आती है। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर हम आपसे विस्तार में जानकारी लेंगे, उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं और श्रोताओं आपको

बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल है आवश्यक। और इस खास विषय पर आपके भी हैं अगर कोई सवाल तो आप करिए ना हमें कॉल। उसके लिए हमारे नंबर है 0112342108 और 0112342102। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9868107070।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, कई लोग किसी खास तरह की सुगंध या किसी चीज के संपर्क में आने

0: से ना चीखना शुरू कर देते हैं। क्या एलर्जी सिर्फ चीख आने या नाक बहने तक सीमित है या ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है?
1: सो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें एक्चुअली दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये नाक को प्रभावित करती है? तो हम कहते हैं कि एलर्जी की एक बीमारी जो है पूरे शरीर को, और सिर्फ पूरे शरीर को नहीं, ये पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कैसे? कि जो लक्षण है वो लक्षण जो है एलर्जी के किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। वो नाक में भी आ सकते हैं, आंखों में भी आ सकते हैं, कई बार कान में बार बार दर्द होना, कान बहना, वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को कई बार कहा जाता है कि टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। बच्चों को नेबुलाइजर इनहेलर की जरूरत पड़ना, छाती से सीटी जैसी सी आवाजें आना, ये सब भी छाती की एलर्जी की वजह से हो सकता है। शरीर पे दाने चकते होना, खुजली होना, और कभी कभी एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि ये जो स्मेल है, ये स्मेल जो है इससे जैसे परफ्यूम हो गया या ये चीजें हो गई जो स्मेल की चीजें, स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीजें हैं, अक्सर ये एलर्जी करती नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों की समस्याओं को बढ़ा देती है। तो ये ट्रिगर्स हैं, बट ये खुद अपने आप में एलर्जी नहीं करती है।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को किसी तरह की स्मेल से एलर्जी है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, डेली बेसिस पे छींकें आ रही है, आपको बार बार दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, आपका काम प्रभावित हो रहा है, नींद प्रभावित हो रही है, आपको उसके लिए चिंता करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये सही समय है कि जिसके अंदर एक एलर्जी के एक्सपर्ट को आपको जरूर मिलना चाहिए और जरूर दिखाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ले लेते हैं इनको कॉल। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। मेरे तीन सवाल हैं। पहला सवाल, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी जी।
2: तो मेरी उम्र 48 वर्ष है और व्हाइट मेरी स्किन से कॉर्नर होते ना, ऐसे मेरी स्किन है।
0: जी जी।
2: तो मेरा सवाल है कि मुझे ना श्वसन एलर्जी है। अब जो भी खुशबू या महक से मुतालिक चीजें हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बदबू या स्मेल से मुतालिक चीजें हैं उससे मुझे मतलब एक दिमाग में भी वो प्रॉब्लम चल जाती है और पेट में भी, और सांस लेने में जो है वो दम सा घुटता है
0: जी।
2: और कुछ हद तक मुझे स्किन एलर्जी भी है, तो इसके लिए मैं घरेलू स्तर पर मैं क्या करूँ, या अगर आपके पास आते हैं तो वहाँ मतलब मेडिसिन से इलाज हो जाएगा कि मतलब खून खराब है, तोड़ फोड़ माधाड़ की नौबत आएगी
0: जी।
2: पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल कि मेरी माता जी को वो चमड़ी स्किन से मुतालिक एलर्जी है, उनकी उम्र 73 वर्ष है, तो वो क्या करें घरेलू स्तर पर, अगर आपके पास आया तो आप क्या करें। तीसरा, मेरी सिस्टर है उनकी उम्र 47 साल है और उनको जो है नाक से मुतालिक एलर्जी है। तो ये तीन सवाल है, इनका जवाब दें, बड़ी मेहरबानी
0: होगी। जी जी।
1: डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपके प्रश्न का। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके तीनों प्रश्न एक दूसरे के साथ संबंधित ही हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि तीनों जो सदस्य घर के हैं जो ब्लड रिलेटेड हैं, तो ये ब्लड रिलेटेड तीनों सदस्यों को एलर्जी की समस्या है। और जो सांस की नली से संबंधित, तो सांस की नली हमारी नाक से शुरू होती है और फेफड़ों तक जाती है, तो जिसको हम रेस्पिरेटरी एलर्जी कहते हैं। और आपको अगर देखा जाए तो किसी एक सदस्य को नाक के लक्षण ज्यादा है, किसी दूसरे सदस्य को शायद सांस के लक्षण ज्यादा है, पर ये एक कॉमन एलर्जी ही है। अब ये हमें समझना है कि दो तरीके के कण जो है वो मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। एक तरीके का कण है जिससे वाकई में एलर्जी होती है, जैसे फूलों के पराग कण हुए, या जैसे मौसम बदलाव के साथ में अलग अलग तरीके के पराग कण आते हैं, कभी कभी कुछ तरीके के डस्ट माइट, कॉकरोच, पेट डंडर्स, घर के अंदर पालतू जानवर, इनके जो डंडर्स होते हैं, उन सभी चीजों से जो एलर्जी हो सकती है वो ट्रू एलर्जी है। लेकिन जिस व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत है, ऐसी स्थिति में उनकी जो नाक की त्वचा है अंदर से, या सांस लेने की जो त्वचा है अंदर से, वो अधिक सेंसिटिव हो जाती है, अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाकी चीजों को भी रिएक्ट करती है, जैसे कोई स्मेल आ गई तो उसको भी रिएक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में वाकई उसे एलर्जी नहीं होती, पर क्योंकि त्वचा पहले से ही संवेदनशील है जिसकी वजह से वो रिएक्शन करती है और आपको लक्षण आते हैं। रही बात बचाव की, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक विशेषज्ञ से मिलकर उनकी के साथ में ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके और उनको दूर करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। और कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिन ट्रिगर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयां जिनको भी दिया जा सकता है और उसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सांस की नली में और नाक के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे बार बार वो रिएक्शन ना हो। ओवरऑल जो आपको चीजें तकलीफ करती हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्मेल से होने वाले एलर्जी की, तो बहुत से लोग एलर्जी और सामान्य सर्दी जुकाम में अंतर कभी कभी नहीं कर पाते, आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे एलर्जी है या सिर्फ वायरल संक्रमण?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर देखें तो जैसे आपने नाम लिया

0: वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है. इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें या वायरस जो है वो ज्यादातर बुखार के साथ आपको मिलेगा. एक बार जब भी कभी आएगा तो बुखार आएगा, बुखार के साथ में 5 से 7 दिन की वो प्रतिक्रिया रहेगी, जिसके अंदर शुरू के 3-4 दिन के लिए बुखार रहेगा, नाक बहेगी और अक्सर जो है वो छींके मतलब लगातार आना, लगातार नाक से पानी बहना और ये चीजें अचानक शुरू हो जाएंगी और उसके बाद वो दवाओं को 1 दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी. एक और बड़ा अच्छा मिलेगा आपको वायरल के अंदर कि एक से अधिक लोगों को एक ही समय के आसपास में वायरल घर के अंदर मिलेगा. तो आप हमेशा पूछ सकते हैं घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को भी कुछ सर्दी जुकाम चल रहा है क्या, तो उसकी वजह से शायद ये वायरल ज्यादा है. लेकिन अगर ये सिंपल एलर्जी है तो उसमें बुखार नहीं आएगा, बदन दर्द नहीं होगा, शरीर में थकावट नहीं होगी, लेकिन सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग छींके आएंगी, सर्द गर्म के गर्म के समय के ऊपर भी छींके वगैरह ज्यादा परेशान करेंगे, नाक ब्लॉक करेगी, तो इसका मतलब हम एलर्जी की वजह से ज्यादा परेशान.
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर, ले लेते हैं इनका कॉल. हेलो
2: नमस्कार.
1: नमस्कार,
2: मैं टीना बात कर रही हूँ दिल्ली से
1: जी.
2: मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर सर से. डॉक्टर सर को नमस्कार पहले और एंकर मैम को भी नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
1: जी पूछिए सवाल.
2: सर मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल ये कि जैसे ना सर मुझे ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से एलर्जी है, मतलब आप ये समझिए कि जैसे जरा सी हवा चलती है और मिट्टी उड़ने लग जाए तो मुझे एकदम से सांस घुटने लग जाता है और एकदम से बेचैनी होना शुरू हो जाती है. या जैसे मैं बाहर कहीं ट्रैवल करती हूँ तो भी अगर जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है या ज्यादा क्या नाम है धूप की वजह से भी मुझे कई बार एलर्जी मतलब सांस घुटने की जो है वो प्रॉब्लम है. तो और जैसे घर में हम धूप अगरबत्ती ये सब भी नहीं जला सकते तो ये मतलब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने अस्थमा का वो किया क्या नाम है जांच की, वो नॉर्मल निकला है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी एकदम ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर जहाँ पे मेरा कोई फैमिली का पर्सन मेरे साथ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, कोई क्या ऐसी मेडिसिन है जिसे खा के थोड़ी राहत मिल सकती है और इससे
1: लगता है.
0: तो आपका प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो आपको जो समस्या है उसके अंदर दमे की समस्या अधिक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत नाक से होती है, नजले जुखाम से होती है. तो ऐसी स्थिति में कुछ तरीके के इलाज हमारे लिए जरूरी है. सबसे पहले हाँ ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दमे की शिकायत हो लेकिन उनका टेस्ट नॉर्मल आ सकता है. तो ऐसी स्थिति में कुछ अलग भांति के अलग तरीके के टेस्ट, जैसे आजकल हमारे पास में कुछ अति संवेदनशील टेस्ट जिसको ऑसिलोमेट्री बोलते हैं, जो बहुत जरा सी चीज को भी पकड़ पाते हैं और उसके बाद में उसको बता पाते हैं कि क्या सांस की नली में थोड़ी बहुत भी सूजन है कि नहीं है. तो वो करके और अगर हमें पता चल पाए कि थोड़ी सूजन भी है तो आपको कुछ दवाइयां शुरू की जाती हैं, जिन दवाइयों के माध्यम से हम आपकी जो सांस की नली और नाक की जो संवेदनशीलता है उसको कम कर पाते हैं. फिर उसके बाद आपका प्रश्न है कि कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कभी कोई तकलीफ आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो उसके लिए कुछ रेस्क्यू मेडिसिन दी जाती है. अक्सर ये मेडिसिन जो होती है ये आपको नाक के माध्यम से या सांस के माध्यम से लेने की होती है, ये खाने पीने की नहीं होती है. रेस्क्यू मेडिसिन जो है जिस समय के ऊपर अधिक तकलीफ है तब कोशिश की जाती है कि खाने पीने की दवा के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, या तो इनहेलर या नेबुलाइजर की दवाइयां या नाक का स्प्रे, और या फिर अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, पर खाने पीने की टेबलेट सिरप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते.
1: डॉक्टर साहब एक और कॉलर है कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल भी. हेलो. हेलो
3: नमस्कार जी.
1: नमस्कार
3: सर को भी नमस्कार जी.
0: नमस्ते भैया.
3: मैं यामिन भाई रेडियो वाला चिरूड़ी लॉन जी लगा
1: जी.
3: जी मैं सर से जानना चाह रहा हूँ जैसे कि मौसम बदलता है
1: जी
3: तो उसमें लोगों को दिक्कत होती है, सर्दी से गर्मी में जाएंगे, गर्मी से बरसात में आएंगे तो दिक्कत होती है. तो ये भी एक एलर्जी होती है और क्या ये माँ बाप से बच्चों में भी जाती है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बताई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जेनेटिक होती है, अनुवांशिक होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स में माँ बाप के अंदर या इवन माँ बाप में भी नहीं कभी दादा दादी या नाना नानी के अंदर भी अगर एलर्जी के किसी तरीके के लक्षण रहे हैं तो बच्चों में या पोते पोती नाती पोतों के अंदर भी काफी हद तक उनमें एलर्जी होने के लक्षण हो सकते हैं. और जैसे आपने बताया मौसम के बदलाव के साथ लक्षण होते हैं जिसको हम सीजनल एलर्जी बोलते हैं, ये ज्यादातर परागकणों की वजह से, क्योंकि अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे जो हैं वो खिलते हैं, उन पर फूल आते हैं, उनके परागकण आते हैं, और ये परागकण जब संपर्क आते हैं स्पेशली संवेदनशील त्वचा के साथ, संवेदनशील नाक या सांस के साथ, सांस की नली के साथ, तब उस समय पर वो लक्षण करते हैं. तो यस इसके लिए जानकार टेस्टिंग करानी बहुत जरूरी है और उसके बाद में फिर उसका यथासंभव उपाय जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को गले में खराश होती है, तो क्या ये भी किसी तरह की एलर्जी का सिम्टम है?
0: जो गले में खराश है वो ज्यादातर किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, लेकिन उसके अलग कारण भी हो सकते हैं। जो कॉमन कारण है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट

0: नजल ड्रिप. पोस्ट नजल ड्रिप का मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे किसी को नजला जुकाम है तो नाक आगे बहती है, लेकिन कई बार नाक बंद होती है, बहती नहीं है, लेकिन वो नाक पीछे गिरती है गले के अंदर. गले के अंदर गिरने की वजह से वो गले के अंदर एक तरीके की सूजन कर देती है, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में कोबल स्टोनिंग बोलते हैं. ये जो सूजन है, इसकी वजह से गले की जो पिछली सतह है, जो त्वचा है, वो लाल हो जाती है और वहां पे खुजली होने लगती है. कभी कभी तालू में भी खुजली होने लगती है, आपने महसूस किया होगा. और ये सभी चीजें एलर्जी के लक्षण है. और उसके बाद में आपने देखा होगा कि लोग की वजह से मुंह खोल के सांस लेते हैं. जो हवा जो है, जो पॉल्यूटेड एयर है, जो इन्फेक्टेड एयर है, वो उस कोबल स्टोन अपीयरेंस के साथ जाके चिपक जाती है और फिर वहां पे इन्फेक्शन करती है. तो गला खराब होना, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ना, फीवर आना, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं. लेकिन कभी कभी अलग कारण, जैसे किसी को एसिडिटी, एसिडिटी काफी कॉमन चीज है और रिफ्लक्स की वजह से जो ये तेजाब है पेट से, ये रिफ्लक्स होके गले के अंदर जाता है और वहां पे भी ये खराश का कारण बन सकता है.
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल भी. हेलो.
2: हेलो
1: जी.
2: जी नमस्कार.
1: नमस्कार,
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: हाँ जी
2: डॉक्टर साहब नमस्कार.
0: नमस्ते जी.
2: मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि अगर पीएफटी नॉर्मल किसी का आ जाए तो उसको एस्थमा हो सकता है.
0: जी.
2: अगर किसी को पीएफटी नॉर्मल आ जाए, उसको फिर भी सिम्टम हो, तो उसको कौन सी जांच करानी चाहिए?
0: बिल्कुल, तो उसके लिए जो जांच है उसका नाम है ऑसिलोमेट्री. ऑसिलोमेट्री के नाम से ये टेस्ट होता है, जो पीएफटी के मुकाबले अधिक सेंसिटिव, अधिक संवेदनशील होता है. कुछ कुछ जगहों पर पाया जाता है, लेकिन हाँ, ये बारीक से बारीक सूजन को भी सांस की नली में पकड़ पाता है. जो स्पायरोमेट्री का जो टेस्ट है, जो पीएफटी का टेस्ट है, वो कभी कभी बारीक सूजन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन जो ऑसिलोमेट्री का टेस्ट है वो उसको बारीक सूजन को भी पकड़ सकता है.
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा. डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सबसे अधिक एलर्जी किन वजहों से होती है? क्या धूल प्रदूषण, पराकरण और कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं?
0: जी, तो हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर मोटे तौर पे माने तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक है जो किसी खाने पीने की वजह से होती है, एक है जो सांस लेने की वजह से होती है. अगर खाने पीने के अंदर बात करें तो सबसे अधिक जो मुख्य कारण है वो जैसे छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली दूध, दूध के बाद में जो अगला कारण है वो अंडा, फिर मूंगफली, कभी कभी किसी कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, और फिर उसके बाद में जो लोग नॉन वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उनसे भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है. तो ये कॉमन कारण है खाने पीने की एलर्जी के. लेकिन हमने देखा कि भारतवर्ष के अंदर कुछ नए तरीके के कारण जो शायद विदेशों में नहीं मिलते, जैसे ब्रिंजल, बैंगन की एलर्जी होना, भिंडी की एलर्जी होना, तो ये भी हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि पाए जाते हैं.
1: सर, किसी प्रमुख सब्जी, और जैसे आपने सी फूड के बारे में कहा, तो इससे एलर्जी होने का कारण क्या होता है?
0: देखिए, एलर्जी जो है वो किसी भी फूड के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है उससे होती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम किसी को भी पसंद और नापसंद कर सकता है. तो जो ये पसंद और नापसंद करना है, ये हर एक के इम्यून सिस्टम का अपना खुद का रोल है, जिसको कि कोई डिफाइन नहीं कर सकता. ज्यादातर जेनेटिक कंडीशंस में, जो अनुवांशिक कंडीशन है, उसके अंदर ये पोटेंशिएट हो जाता है. लेकिन ये इम्यून सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पसंद करना है और क्या नहीं पसंद करना है. अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि एलर्जी जो है, अगर आप देखेंगे तो जो लोग शहरों में ज्यादा रहते हैं, जो लोग साफ स्वच्छ वातावरण में ज्यादा रहते हैं, साबुन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कहीं अधिक पाई जाएगी. जबकि उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे गांव के माहौल के अंदर, जहां पे के लोग मिट्टी के साथ में पल बढ़ रहे हैं, वहां पे एलर्जी की समस्या कम होती है.
1: ऐसा क्यों?
0: तो जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन, हम एक नवीनीकरण की तरफ बढ़ते जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, नेचुरल चीजों से दूर होते जाते हैं, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर जो है उन नेचुरल चीजों को भूलता जाता है. और फिर वही नेचुरल चीजें जब हमारे संपर्क में आती हैं बाद में, 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता है कि इनको कैसे रिएक्ट करना है, और ऐसी स्थिति में वो अननेचुरल प्रतिक्रिया करता है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. जैसे हम बात कर रहे थे फूड एलर्जी की, उसी के साथ में रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी. अब इसके घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर अलग कारण है, चार दीवारी के बाहर अलग कारण है. चार दीवारी के अंदर जो कारण है वो अक्सर बोलते हैं डस्ट माइट. डस्ट माइट जो है, इसके अंदर ये एक छोटा कीड़ा होता है जो हमारे बिस्तर में, चादर में, सोफे में, गद्दों में पाया जाता है. ये बहुत महीन कीड़ा है जो हम आंख से नहीं देख सकते, और ये कीड़ा कुछ केमिकल बनाता है. ये केमिकल जो होते हैं, जब रात को जब हम सोने के लिए गए और ये केमिकल जो है नाक के जरिए अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा रात को 12 बजे 1 बजे इनहेलर की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, घुटन होना छाती के अंदर, सुबह सुबह उठते के साथ ही उनको छींके आना. कुछ लोगों को लगता है मुझे टूथपेस्ट एलर्जी है, कुछ लोगों को लगता है मुझे साबुन से एलर्जी है, पर एक्चुअल में डस्ट माइट की एलर्जी होती है. और और ये डस्ट बाइट के जो कण हैं ये इनको परेशान करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इंडोर में वो है कॉकरोच। आजकल हम सभी लोग कहते हैं कि कॉकरोच जो है वो हमारे घर में है नहीं, लेकिन कॉकरोच एक्चुअली सभी के घर में है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होने की वजह से हमें दिखते नहीं, और ये कॉकरोच के जो कण है वो काफी दूरी तक 70 मीटर

0: 70 मीटर 100 मीटर दूरी तक भी क्रॉस कर सकते हैं हवा में, तो ये कॉमन कारण है।
1: और ये क्या परेशानी पैदा करते हैं सर?
0: ये वन सेकेंड फिर से नाक के अंदर जाएंगे तो नाक के अंदर से नजले की दिक्कत करेंगे, सांस के अंदर जाएंगे तो सांस के अंदर दिक्कत करेंगे। और ये माना जाता है कि एस्थमा दमा के मरीजों में जिनको कॉकरोच की एलर्जी है वो काफी हानिकारक मानी जाती है, और माना जाता है कि वो काफी लंबे समय तक परेशान रहेंगे, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से फंगस, कभी कभी हम घरों के अंदर पेड़ पौधे लगा लेते हैं, दीवारों में सीलन आती है, तो ये फंगस जो है ये भी परेशान करती है।
1: ये एक मुख्य कारण
0: जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे कल आजकल देखने आ रहा है पेट्स, कुत्ते और जो कैट्स और जो डॉग्स और जी ये जो घर के अंदर रखते हैं ये चीजें।
1: सर इस पर मैं आपसे विस्तार में बात करूंगी, उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो।
2: हेलो मैडम
1: जी,
2: मेरी आंखें लाल रहती हैं।
1: जी जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैडम मेरा नाम रोशन सिंह है
1: जी।
2: मैं वैसे रहने वाला तो उत्तराखंड काशीपुर का हूँ, लेकिन दिल्ली में हूँ इस समय।
1: ओके।
2: हाँ। तो मेरी आंखें काफी लाल रहती हैं, ऐसी रहती है जैसे कोई नशा कर रखा है, जबकि नशा कोई नहीं किया है। पानी अगर सवेरे उठता हूँ पानी से नहाता हूँ, मैं साबुन भी नहीं लगाता तो भी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, और मुंह धोता हूँ तो भी आंखें लाल हो जाती हैं, काफी लाल हो जाती हैं। डॉक्टर को दिखाया था, तकरीबन 15-20 साल से लगातार लाल है
1: जी।
2: डॉक्टर को बहुत दिखाया तो डॉक्टर ने आंखें चेक करके ये बताया कि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, मुझे कोई जलन या खुजली सरी नहीं, लेकिन देखने वाला सामने कहता लाल है, लेकिन डॉक्टर कह रहे तुझे कोई परेशानी नहीं तो फिर मत इलाज करा, लेकिन देखने वाला परेशान हो जाता है। मैं गुरुद्वारे में हूँ इस समय
1: जी, जी,
2: तो
1: जी।
2: लेकिन यही कहते हैं कि तुम कोई नशा करके आया है या कुछ है ऐसा।
1: डॉक्टर साहब इनके
0: जो आंखों का लालपना है, जो आंखों का लालपना है जैसे आपने बताया, तो ज्यादातर आंखों की जो एलर्जी है वो खुजली के साथ आती है, और खुजली के साथ में लालीपना होना, खुजली के साथ में आंखों से पानी चलना, तो लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि सिर्फ लालीपना है लेकिन खुजली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एलर्जी के चांसेस कम है, क्योंकि एलर्जी के लक्षण ज्यादातर खुजली के साथ में आएंगे, बिना खुजली के चांसेस काफी कम है
1: जी। उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। इस विषय से जुड़े सवाल अगर आपके पास भी हैं आप हमें कॉल करिए ना, उसके लिए हमारे पास नंबर है 01123421080 और 23421082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस विषय पर हमें बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर साहब आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन में ले लेते हैं इनको। कॉल
2: जी।
1: हेलो।
3: हेलो, यस मैम, गुड आफ्टरनून।
1: जी जी, नमस्कार।
3: मैम मैं ऋषभ बोल रहा हूँ कटिहार बिहार से।
1: जी
3: मैम, अभी जितनी सारी एलर्जी को लेके बात हो रही है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज मेरे लिए है, तो मैं अपना स्पेसिफिकली बताता हूँ।
1: जी।
3: जैसे है ना कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ, उठा, फैन ऑन है, मैं सो के उठा, और जैसे उठा तो फिर जो हवा लगती है ना, ठीक होने लगती है। फिर अगर तुरंत मैं पानी पी लिया तो उससे होने लगती है, या फिर जैसे अभी मौसम खराब है, हवा चलने लगी, धूल उड़ गया तो थोड़ा सा उससे हो जाएगा। कहीं पे गंदा जमा हुआ है, उसको अगर थोड़ा साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, तो उससे होने लगती है। तो कुछ कुछ ऐसे सही सिम्टम्स हैं।
1: जी,
3: जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ थोड़ी ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ा सा घर गांव की तरफ चला गया तो वहाँ सुबह की हवा लगती है, उससे हो जाती है और छींक आती है, नाक से पानी जाता है, कुछ इस तरह।
1: इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी
2: जैसे हमने आपको बताया, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने आपको बताया कि क्योंकि आपकी नाक की जो त्वचा है वो अंदर से काफी संवेदनशील हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, जिसकी वजह से जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, हवा, धूल के कण, ये सभी आपको परेशान करते हैं। मैं एक बहुत सरल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। हम सभी लोग जैसे जब महिलाएं घर में खाना बनाती हैं और वो हाथ से नमक मिर्च कोई भी चीज डालती हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर हाथ में छोटा कट लग जाए और अब वो नमक को हाथ लगाए तो नमक जलाएगा, तो नमक नहीं जला रहा है, नमक तो पहले भी नहीं जला रहा था, वो कट है जिसकी वजह से अब नमक त्वचा के संपर्क में आया तो जलन महसूस हुई। इसी तरीके से अगर नाक आपका ठीक है, संवेदनशील नहीं है, तो यही चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर नाक को एलर्जी है और नाक आपका संवेदनशील है तो यही चीजें आपको महसूस करेंगी और जलाएंगी। तो उसके लिए मैं यही राय दूंगा आपको कि एक बार एक आप निकट के किसी एलर्जी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी जांच कराएं, वो आपको जरूर मदद करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। हमें वेस्ट बंगाल से सादिर लिख रहे हैं कि मेरे को बहुत तेज खर्राटे आते हैं और इसकी वजह से इनके परिवार वालों को भी काफी दिक्कत होती है।
2: जी जी, तो हमें ये समझना है कि खर्राटा क्यों आता है। खर्राटा जो है वो अक्सर इस वजह से आता है कि नाक के पीछे का जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, अगर वो रास्ता किसी कारण से थोड़ा पतला हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें खर्राटा आता है। अब ये कई कारण हो सकते हैं जिसके अंदर से, छोटे बच्चों के अंदर अक्सर ये एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी, जिसमें पीछे के रास्ते के अंदर जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल बढ़ जाता है, एडेनॉइड बढ़ जाता है, वो रास्ते पे दबाव डालता है तो रास्ता पतला हो जाता है, तो खर्राटा आता है। यही चीजें 40-45-50 की उम्र के बाद में जो सांस के पीछे का रास्ता है उसकी दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है, जब वो कमजोर हो जाती है, या मोटे लोगों के अंदर, ओबीज लोगों के अंदर, तो वो दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से, तो रास्ता पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। तो हर खर्राटा एलर्जी नहीं है, पर हाँ कुछ खर्राटों में एलर्जी कारण हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, रोहिणी से राज लिख रहे हैं कि इनकी वाइफ को नोज पर निशान है और डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उन्होंने हर्पिस की बीमारी बताई है, निशान अभी भी है, क्या हम आपके पास आ सकते हैं और ये क्या है प्रॉब्लम?
2: तो जो हर्पीज है, हर्पीज हमें समझना है कि हर्पीज एक वायरस का इन्फेक्शन है और

0: वायरस का इन्फेक्शन जो है या हर्पीज जो है वो एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में, बच्चों में या बड़ों में कभी कभी नाक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल क्रीज होती है जिसको हम एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं. सैल्यूट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को नाक बह रही है और बार बार वो हाथ से नाक को रगड़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंचता है तो नाक पे एक हॉरिजॉन्टल क्रीज बन जाती है, एक निशान आ जाता है जो परमानेंटली नजर आता है, तो उसको वो एलर्जी की वजह से हो सकता है.
1: जी जी जी. डॉक्टर साहब, नरेंद्र सिंह चौहान हमें उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि खासकर दिल्ली के पर्यावरण को वो शुद्ध करने में सहायक साबित हो सके.
0: ये एक बहुत अच्छी सोच है और एक बहुत अच्छा प्रश्न है. तो ये सिर्फ एलर्जी को ही नहीं, ये तो बहुत सारी चीजों को प्रभाव कर होगी. सबसे पहला जो हमें समझना है कि सबसे पहले खुद को बदलाव करना है. सबसे पहले खुद ये करना है कि हमें किसी किस्म का पॉल्यूशन नहीं फैलाना, ये सबसे पहले जरूरी है. फिर उसके बाद अपने आसपास के माहौल को थोड़ा बेहतर करना है और उसके बाद आगे जाना है. तो एजुकेशन, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप चारों लोगों को बताएं कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग कितना हानिकारक है. मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आपके घरों

0: टेंशन नहीं फैलाना, ये सबसे पहले जरूरी है। फिर उसके बाद अपने आसपास के माहौल को थोड़ा बेहतर करना है और उसके बाद आगे जाना है। तो एजुकेशन, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप चारों लोगों को बताएं कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग कितना हानिकारक है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आपके घरों के अंदर अगर अगरबत्ती धूपबत्ती यूज होती है, आप आज से ही उसको बंद कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि एक अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो 75 सिगरेट के बराबर धुआं देती है, एक धूपबत्ती 130 सिगरेट के बराबर धुआं देती है। तो आप समझिए कि अगरबत्ती धूपबत्ती आप जला रहे हैं लेकिन कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन कितनी सारी सिगरेट के धुएं के बराबर तो आप ऑलरेडी अपने फेफड़ों में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरू करें तो मुझे लगता है वहीं से ही बदलाव की शुरुआत हो जाएगी।
1: जी, मनदीप झज्जर से लिख रहे हैं कि इनकी राइट साइड की तरफ फूड पाइप में घर घर की आवाज आती है और छाती में ऐसा खाली खाली लगती है, राइट साइड में होता है ऐसा, क्या करें?
0: देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सभी लक्षण हैं। लक्षण जो है जैसे सांस की नली के अंदर दबाव की वजह से, सांस की नली में बलगम की वजह से, सूजन की वजह से, तो सबसे पहले आपको एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे सबसे पहले ये जांचना है, कराना है, पीएफटी कराना है या ऑसिलोमेट्री कराना है और जानना है कि ये क्या सांस की नली में सूजन है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अगर ये सांस की नली में सूजन है तो क्या एलर्जी है कि नहीं। अगर ये एलर्जी का लक्षण रखता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एलर्जी की वजह से हो सकता है, फिर एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी यथासंभव जांच कराना।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी,
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, आप सवाल पूछिए अपना।
2: मैं आरडी जिला राजस्थान से बोल रहा हूँ, आशीराम मेरा नाम।
1: जी जी,
2: एलर्जी है।
1: आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्लियर। जी,
2: मेरे नाक में बहुत परेशानी रहती है, पानी बहता रहता है
1: जी,
2: और नाक बंद हो जाता है, पानी अंदर गले में गिरता है
1: जी,
2: छींटे बहुत आती है
1: जी,
2: को थक वो करता हूँ तो बहुत चलती है। एक परेशानी तो ये है, और एक जो कभी कभी जैसे कुछ खाया तो रात को 1-2 बजे सांस की बहुत परेशानी हो जाती है और ठीक होगा
1: जी जी।
0: तो धन्यवाद आपके प्रश्न का। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि जो सबसे कॉमन समस्या है वो रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस की एलर्जी है, जिसमें नाक की समस्या, सांस की समस्या जो अक्सर रात में या अर्ली मॉर्निंग के अंदर आती है, और बिल्कुल वैसे ही लक्षण आपने बताए। तो इसके लिए जो आपके आसपास बगल में अच्छे एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब से मिलके उनसे नाक की जांच, सांस की जांच कराएं, उसके बाद वो आपको कुछ दवाएं लिख के देंगे, नाक का स्प्रे, इनहेलर की कुछ दवाएं लिख के देंगे, कुछ जांचें करेंगे, कारण बताएंगे क्यों है, और साथ में उनके निदान को भी बताएंगे कि कैसे बचना है इस एलर्जी से।
1: जी डॉक्टर साहब, हमें सुकांता बालो जोधपुर राजस्थान से लिख रहे हैं कि इनको एक परेशानी है कि इनके नाक पर पिंपल आ गए हैं और जब ये सनलाइट से घर आते हैं तो इनको एलर्जी फील होती है, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह दी जिससे इनको अभी राहत नहीं मिली, तो ये क्या करें?
0: ज्यादातर स्थिति के अंदर जो पिंपल्स होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से या फैट की वजह से होते हैं, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कभी गर्म से सरद में या सरद से गर्म में कभी जाएंगे और लक्षण अगर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपकी नाक की त्वचा अंदर से संवेदनशील है। अगर वो अंदर से संवेदनशील है तो उसका कारण जानने की जरूरत है कि क्या ये एलर्जी है या ये एलर्जी नहीं है, तो वो जांच करके पता चलेगा। कुछ एलर्जी के टेस्ट होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या आप वाकई में एलर्जी से ग्रसित हैं कि नहीं है।
1: डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं पहले उनका कॉल। हेलो।
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
3: जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ।
1: जी।
3: अच्छा सर, वर्ष 2002 में मैं ज्यादा बीमार हुआ था, मतलब बुखार वगैरह और भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसके बाद मुझे मतलब बलगम रहने लगी, खांसी में लगातार बहुत खांसी उठती है, मैंने बहुत इलाज करा लिया, यहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है और राम मनोहर लोधी हॉस्पिटल नई दिल्ली में है और बाकी और हॉस्पिटल से भी कराया है जी, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, आराम वो आराम नहीं मिला, मतलब ईएनटी वाले को भी दिखाया यही करनाल में और जो ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हो, टीबी वाले डॉक्टर हो, इनको भी दिखाया जी, तो बात यह है कि जो है ना बार बार थूकना पड़ता है, रुकते खंडे टाइम के बीच में उसका थूकना पड़ता है बलगम, या कई बार अंदर निकलनी पड़ती है, तो इलाज बताएं।
0: जैसे आप बता रहे हैं कि बलगम जो ऐसा लगता है जैसे आपकी सांस की नली में अधिक बनता है, और अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि बलगम जो अधिक बनना है वो इन्फेक्शन में भी हो सकता है, एलर्जी में भी हो सकता है, तो जो भी आपकी जांचें हुई हैं, जो भी आपके डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सबसे पहले वो ये बताएंगे कि ये जो बलगम जो बन रहा है अधिक, ये क्या इन्फेक्शन की वजह से क्या एलर्जी की वजह से। अगर ये एलर्जी की वजह से आता है और वो डॉक्टर साहब को लगता है एलर्जी की वजह से है, तो उस स्थिति के अंदर एलर्जी की जांचें महत्वपूर्ण रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको वाकई में किसी किस्म की एलर्जी हो जो काफी समय से पकड़ में ना पाई हो, जिसकी वजह से आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक एलर्जी के जानकार डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वो बेहतर रहेगा।
1: जी डॉक्टर

0: साहब, वीरू बख्शी हमें मेरठ से लिख रहे हैं कि इनके लेग पर कट पड़ जाते हैं और वहां पर इनको खुजली होती है, जिसके कारण ये इनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है और खुजली करने पर खून निकलता है, तो क्या इनको करना चाहिए?
1: जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये खुजली होती है और ये इसका मतलब ये है कि त्वचा में एक लेवल की एक्जिमा की शिकायत है। एक्जिमा एक तरीके की एलर्जी होती है, पर अक्सर ज्यादातर एक्जिमा जो है वो जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट कोलीग्स होते हैं वो डॉक्टर्स जो है वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, पर हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ कारण जैसे व्हीट एलर्जी हो गई या डस्ट माइट एलर्जी हो गई या कुछ और तरीके की एलर्जीज हो गई, वो कभी कभी एक्जिमा को बढ़ा सकती हैं, तो वो कभी कभी हम टेस्ट करके उसमें मदद कर पाते हैं। पर स्किन की केयर जो है वो सबसे पहले इसके अंदर एसेंशियल है, अच्छे मॉइस्चराइजर्स के साथ, कुछ दवाओं के साथ, कुछ मलम के साथ में स्किन की केयर बहुत जरूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से मैसेज कर रही है, वो लिख रही है कि मेरे हस्बैंड को और मुझे थायराइड की समस्या है, कभी कभी गले में खिचखिच होती है, क्या ये थायराइड की वजह से होती है या कोई एलर्जी इसका कारण है?
1: जो गले में खिचखिच होना है उसका और थायराइड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है
0: जी।
1: जो गले में खिचखिच होना है, हाँ, वो पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे हमने कहा कि नाक के अंदर एलर्जी होने की वजह से अगर पानी पीछे टपकता है तो हो सकती है, या कभी कभी एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब की मात्रा अधिक बनना, एसिडिटी अधिक बनना, उसकी वजह से, रिफ्लेक्स की वजह से भी गले के अंदर कभी कभी तेजाब आ जाता है और खिचखिच की समस्या हो सकती है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमें कई हमारे श्रोता जो है व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं कि उनको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और आपके द्वारा दी गई जानकारियां उनको बहुत खास लग रही है। इसके साथ ही हमें पवन कुमार शर्मा हुलास रोधापुर जिला बिहार से लिख रहे हैं कि मुझे घुमोरियों जैसे कुछ कुछ हो जाता है, हर साल एक ही जगह पर मुझे ये प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए, मैं इससे काफी परेशान हूं।
1: जी, ये जो घुमोरियां आप बता रहे हैं इसको हमारी मेडिकल भाषा में काफी कुछ समय पर अर्टिकेरिया कहते हैं, और ये अर्टिकेरिया अगर कुछ समय के लिए चलता है, 2-4 दिन 10 दिन चलता है, तो वो अक्सर वायरल इन्फेक्शन के साथ में, मौसम बदलाव के साथ में हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज जो होती है वो 2 या 3 महीने से अधिक चलती है, क्वालिटी ऑफ को प्रभावित करती है, तब ऐसी स्थिति में ये एलर्जी की वजह से हो सकता है।
0: जी। एक और हमें देहरादून से मैसेज मिला है उषा जी का, वो लिख रही है कि जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ तो डस्ट के कांटेक्ट में आने से पूरी बॉडी पर एलर्जी रैशेस जैसा निकल जाता है और बहुत इचिंग होती है, मुझे कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी है, ऐसे में ये क्या करें?
1: जैसे मैंने बताया आपको कि डस्ट माइट एक इस तरीके का कीटाणु है जो कण जो रिलीज करता है, वो कण जो है अगर सांस के नली में जाते हैं तो नाक की समस्या करते हैं, सांस की समस्या करते हैं, और अगर वही कण चमड़ी पे लगते हैं तो चमड़ी के अंदर भी वो खुजली की समस्या, एक्जिमा की समस्या, ये सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ। जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके उस डस्ट के अंदर वो पार्टिकल्स हैं जिनको के पता लगाना जरूरी है। हाँ। कि वो क्या पार्टिकल्स हैं, और अगर उनको पता लगा के उनको हम रिमूव कर सकते हैं, पर आपके लिए तब तक के लिए एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि घर में ड्राई डस्टिंग न करें, आप जो भी करें वेट मॉपिंग, गीले पोछे की सफाई करें, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, वो शायद ज्यादा फायदेमंद रहे।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो
2: हेलो
0: जी,
2: नमस्कार आप दोनों को।
0: नमस्कार मैम,
2: मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि
0: नाम बताइए मैम अपना।
2: सपना।
0: ओके।
2: हाँ जी, मुझे पूछना था कि मुझे कुछ सालों से, 6-7 सालों से ठंडी चीजें खाने से, दूध दही, मीठी चीजें खाने से, खट्टी चीजें, चावल, दालें, छोले, राजमा, इन सब पे दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं, और अब तो मतलब जॉइंट्स में भी हो रही हैं, जबकि मेरे आरए फैक्टर, सीआरजी सब नॉर्मल है, तो क्या ये एलर्जी है? और सेकंड क्वेश्चन था कि धूप अगरबत्ती घर में जलाने से, जोत जलाने से, आरती करते हैं जो, तो क्या उससे भी पॉल्यूशन होता है?
1: तो जब का पहला प्रश्न है जिसके अंदर आपने पूछा, तो ये सीधे सीधे लक्षण एलर्जी के नहीं है। कभी कभी हमारे को कुछ अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो एलर्जी जैसे हमें लगती हैं। कभी कभी शरीर के अंदर विटामिन डी, B12 की कमी होती है, कभी कुछ और तकलीफें होती हैं जिसको मास्ट सेल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो बहुत रेयरली ही हम पकड़ पाते हैं, ज्यादातर डिसऑर्डर्स नहीं देख पाते हैं, तो उनके सब ये लक्षण हो सकते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, पर ये सीधे सीधे एलर्जी नहीं लगती है। दूसरी बात, बिल्कुल धूप बत्ती अगरबत्ती जो है वो काफी ज्यादा नुकसान करती है, अभी हमने बात किया, लेकिन हाँ, इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा उपाय है कि जोत जलाना, तो जोत जला सकते हैं और उससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं।
0: जी, डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जिन लोगों को पहले से स्किन, किसी तरह की भी स्किन एलर्जी है, क्या ऐसे लोगों को घर पर पेट्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए?
1: देखिए, हमें ये समझना है कि जो हमारी त्वचा है, जो स्किन है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये स्किन जो होती है ये हमारे पूरे शरीर को, पूरे अंगों को बचा कर रखती है, और ये स्किन का एक रोबस्ट, एक रिजिड, एक मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये एक तरीके से हमारे शरीर के किले की वो मजबूत दीवार है, जिसके अंदर कभी भी अगर कोई किसी किस्म की तकलीफ होगी, होल्स होंगे, वो सेंसिटिव होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर एलर्जीज हमारे को अधिक होंगी। तो जो लोग, जिनको स्किन की समस्या है, उनको हमेशा तरीके तरीके की एलर्जीज अधिक आएंगी, ज्यादा आएंगी।

0: में अगर दूसरे तीसरे साल के अंदर कोई पेट्स को लेके आए हैं, कुत्ता बिल्ली को लेके आए हैं, तो वो एलर्जी के कारण बन सकते हैं. तो कभी अगर मान लीजिए किसी बच्चे की त्वचा अच्छी नहीं है, उसकी स्किन जो है उसको एक्जिमा है, तो उसमें एलर्जी के होने के चांसेस अधिक होते हैं. और अगर इन्हीं चीजों को तरीके से बचाव किया जाए तो यही एलर्जी को बचाव भी कर सकते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, स्कूल में किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ताकि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके, क्योंकि बच्चे ना रोज एक लंबा समय स्कूल में बिताते हैं.
0: ये बहुत अहम प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्कूल के अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इसको बहुत गौर करें इस चीज के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक बहुत लंबा समय जो है स्कूल में बिताते हैं. और स्कूल के अंदर बच्चे खाना भी खाते हैं, शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बर्थडे पार्टी हो रही है तो केक भी खाते हैं. और कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मान लीजिए कोई दूध की या अंडे की एलर्जी है, लेकिन उसको बिना जाने अगर उसको एक्सपोजर हो जाए केक का या किसी दूसरे की फूड शेयरिंग का, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है. तो सबसे पहले स्कूल अवेयरनेस, तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोलते हैं एलर्जी स्कूल. इस एलर्जी स्कूल के अंदर हम स्कूल्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में उनको अवेयर करते हैं, सभी को बताते हैं कि क्या क्या एलर्जीज हो सकती हैं. खाना जो है वो हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इस तरीके की तकलीफ है तो उसको खाना शेयरिंग के लिए फोर्स न किया जाए, बल्कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करके, और उस तरीके की टेबल्स बनाई जाए सेपरेटली कि ये पर्टिकुलर टेबल मिल्क एलर्जिक बच्चों के लिए है, ये पर्टिकुलर टेबल एग एलर्जिक बच्चों के लिए है. इसी तरीके से जो स्कूल्स की कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स के अंदर बहुत कॉमन जगह है जहां पे के फूड की मिक्सिंग हो सकती है कि किसी बच्चे को एक चीज से और दूसरी चीज से एलर्जी है और वो आपस में मिक्स हो गई और बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसने कब कंज्यूम कर लिया और उसको तकलीफ हो गई. जो स्कूल का जो स्टाफ है, जो स्कूल के अंदर जो नर्सेज होते हैं, वो इक्विप होने चाहिए कि अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है, कब उसको नेबुलाइजर देना है, कब इनहेलर देना है, और जानलेवा अगर तकलीफ हो सकती है तो उसके लिए क्या इंजेक्शन जो लगाना है और तुरंत लगाना है और डॉक्टर के पास जाना है. तो अवेयरनेस जो है, जानकारी, ये बहुत बड़ी चीज है. और ये मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस मुहिम के साथ, एलर्जी स्कूल के मुहिम के साथ जरूर जुड़े और इस जानकारी को हर स्कूल हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं.
1: जी सर, आपने अभी जानलेवा की बात की, तो क्या कभी एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति को अचानक गंभीर एलर्जी हो जाए तो परिवार को तुरंत क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल हो सकती है, एलर्जी जानलेवा हो सकती है. एलर्जी के अंदर सांस की नली के अंदर घुटन आ सकती है, सांस की नली बंद हो सकती है, चोक हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान का गिर सकता है, और जिस तकलीफ को हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं. तो एनाफाइलेक्सिस अगर किसी को भी होता है तो उस समय के ऊपर एक इंजेक्शन होता है जिसको एड्रेनालिन कहा जाता है, वो इमीडिएटली तुरंत मरीज के लिए जान को बचाता है जो उसके लिए देना जरूरी है. और अगर कभी भी किसी को इस तरीके का एनाफाइलेक्सिस हुआ है तो एनाफाइलेक्सिस को मैनेज करने के बाद उसको एलर्जी स्पेशलिस्ट से सलाह करना चाहिए, कारण जानने चाहिए जिससे भविष्य के अंदर उस एनाफाइलेक्सिस को बचाया जा सके. और आगे कुछ इंजेक्शन आते हैं जिनको लाइफ को बचाने के लिए उनको अपने पास रखा जा सके प्रिवेंशन के तौर पे.
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ हिडन एलर्जीज भी होती हैं जो किसी खास परिस्थिति में उभरती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे कारण है. जैसे एक है इम्प्रॉपर लेबलिंग ऑफ फूड्स. बहुत बार आपने देखा है कि खाने पीने के अंदर जो लेबल्स या तो होते ही नहीं है, लेबल लगे होते हैं तो उसमें आधी अधूरी चीजें लिखी होती हैं, पूरी तरीके से चीजें नहीं लिखी होती, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो नहीं बताते कि इसमें क्या चीजें हैं. कभी कभी फूड की मिक्सिंग होती है, आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ एक ही शेफ जो है वो बना रहा है, परोस रहा है, और कभी कभी सेम ग्लव्स के साथ इधर और उधर मिक्सिंग होती है. तो ये जो सारे कारण हैं ये हिडन एलर्जेंस होते हैं. आजकल हम लोग व्हीट नहीं खाते, आजकल हम लोग जो होते हैं बड़े मिक्स फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा पास्ता. ये जो पिज्जा पास्ता है क्या है? ये सब एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट का, जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि कभी किसी को नट की एलर्जी है, किसी को व्हीट की एलर्जी, और वो उभर के एकदम से सामने आ सकती है. और इसी तरीके से कभी कभी कुछ लोगों को पार्शियल एलर्जी होती है, जैसे व्हीट से थोड़ी एलर्जी है और उसी के साथ कोई दूसरा ट्रिगर जैसे पेन किलर की मेडिसिन खा लिया, एक्सरसाइज कर लिया, जिसको हम बोलते हैं फूड डिपेंडेंट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्सिस. या हमें दो या तीन ट्रिगर डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए होते हैं, तब जाके मरीज को उस एलर्जी के लक्षण आते हैं, लेकिन एक ट्रिगर से वो एलर्जी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं.
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी अवेयरनेस के लिए विभिन्न जो गतिविधियां की जाती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए.
0: देखिए, एलर्जी अवेयरनेस के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो काफी जोरों शोरों से काफी गतिविधियां कर रहे हैं. जैसे मैं आज अगर देखें तो एफएम एयर का काफी शुक्रगुजार हूं इस मौके को देने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए. इस तरीके की एक्टिविटीज हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, हमारा भी अपना एक सोशल चैनल है आई सास के नाम से, उस पर करते रहते हैं. तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में हम सभी से जुड़े और हम उस अवेयरनेस के लिए हम उन सबसे सबको बात करते रहें.
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, एलर्जी को लेकर ना समाज में की भ्रांतियां हैं कि बच्चों को जो एलर्जी है अपने आप ठीक हो जाती है. आप इन मिथकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एलर्जीज का इलाज नहीं है, कई ऐसे मिथक
0: जी जी जी जो कभी काफी लोग कहते हैं कि जैसे एलर्जी तो अल्लाह की मर्जी है. काफी लोग कहते हैं कि एलर्जी तो जन्म के साथ आई है तो वो मरने के साथ ही जाएगी, वो नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है. सबसे पहली चीज ये है कि एलर्जी को हमें समझना जरूरी है कि एलर्जी क्यों.

0: हो रही है, हमारा शरीर की प्रतिक्रिया किसी दूसरी चीज को क्यों रिएक्ट कर रही है, और फिर उसके बाद जब एक बार वो समझ में आए तो उसके बाद में उसका यथासंभव टेस्ट और यथासंभव इलाज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोथेरेपी। दूसरी चीज जो है बचाव, बचाव एक बहुत जरूरी है। ये एलर्जी जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग गांव में रहते थे, जो लोग पुराने लाइफस्टाइल के साथ जीते थे, उनमें एलर्जीज कम मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विदेशीकरण की तरफ बढ़ते हैं, हम बहुत हाइजीन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने जो पुराने जो मिट्टी और जो बाकी चीजें हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं, और शायद उसी वजह से हमारा शरीर कभी सीख नहीं पाता कि इन चीजों से, बाहरी चीजों से कैसे रिएक्ट करना है, और फिर जब एकदम से किसी चीज के संपर्क में आता है तो फिर वो एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। तो ये एक लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना है,
1: सादा जीवन, सरल जीवन ही
0: सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, जो हमें समझना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, क्योंकि अब कार्यक्रम में बहुत कम समय रह गया और आज हमने बहुत सी कार्या इस विषय पर प्राप्त किया आपसे, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन सी बातें जिन्हें हर व्यक्ति को एलर्जी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना है कि एलर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन चीज है। अगर देखें प्रैक्टिकली तो हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी एलर्जी से सफर कर चुका है, गुजर चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींके ना आई हो, सांस ना फूला हो, तो हर एक व्यक्ति जो है उसको सफर कर चुका है। तो एक बहुत कॉमन चीज है, और अगर इसको तरीके से अप्रोच किया जाए तो हाँ, ये एलर्जी का इलाज किया जा सकता है। दूसरा, हमें यह समझना है कि एलर्जी को अगर न ढंग से किया जाए तो यह क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, अगर आज एक बच्चा है जिसको सांस फूल रहा है, जो अपना बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उसके पेरेंट्स भी बेचैन हैं, वो पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित है, वो भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एलर्जी का इलाज नहीं किया जा सकता। समय रहते अगर एलर्जी के कारणों को पकड़ा जाए, उनको दूर किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अगर उनका इलाज किया जाए, तो उसको बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, व्यक्ति अपनी साधारण लाइफ जी सकता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: तो आज हमने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में बात की, एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस पर हमें खास जानकारी दी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे इस शो में आए और हमें इतनी खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: सबंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
1: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
1: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
1: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन

0: या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बखत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी, अरे सुन तो। अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये ये ये ये रोन

0: पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है। कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
1: अब
0: चलो,
1: देखो ये
0: पेड़ देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़ और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
0: चलो इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
2: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो रहने दे इस पेड़ को। तो
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: समझ गई ना?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे,
0: तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे।

0: फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे।

0: भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: सुनिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: पोशाक गुड़ी यथासंभव खोली दिंतु मुंड को धोई दिंतु एवं ओदा कपड़े पोछतु रोगी को पंखा कूलर किंवा एसी पवन में सुवाई दिंतु अवस्था उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंवा एम्बुलेंस डाकंतु
1: वयस्क तथा अस्वस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला अंशुघातर आशंका अधिक रही
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

नमस्कार शुभ संध्या मुख्य संवाद सहित मुनीना साहू। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा तिथि पुरी श्री मंदिर श्रीजीव मान रत्नवेदी छाड़ी धाड़ी पहंडी स्नानवेदी को विजे करिसंती। सुना कोर 108 गरा सुभाषित जल रे श्रीजीव मानंकु स्नान करा जाय छे। स्नानवेदी उपरे चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करिबा लागि बड़ दांड रे श्रद्धालु प्रबल भिड़ लागि रही छे। स्नान परे श्रीजीव माने श्रद्धालु को दुर्लभ गजानन बेसरे दर्शन देउछंती। सुरक्षा दृष्टि रे रखि 79 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाय छे। देशव्यापी समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आज कार्यकारी करा जाय छे। नूआदिल्ली ठारे आयोजित 16 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रीय परिषद सम्मेलन अवसर में केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यार शुभारंभ कर। राज्य विद्यालय गुड़ी को संशोधित पुस्तक

0: ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक दिल से दिल तक रे आरंभ होई जाई छी शो डायल इन लाइव चिट चैट आउ आज डायल इन लाइव चिट चैट रे प्रश्न रही छी जे आपनों को पाखरे काहर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो साइती रखी छंती नंबर टी होची 0671-230-3153 आम सहित जन साथी जोड़ी देखा किए कल कर हेलो
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: जय जगन्नाथ नमस्कार किए कहते कौ
1: रेडियो लभर तथा जातीय अंतर्जातीय रेडियो श्रोता नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत नारायण भाई
1: धन्यवाद
0: केमिति अच्छा
1: गाँव रे तो अच्छी बहुत गरम हो गाँव में आसती चाउल उठापी प्राय सब कटक आइसक्रीम बिक्री कै
0: ब्लैक एंड व्हाइट
1: मो बाप

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, किए कहते कौटू कहते
2: जगतसिंहपुर
0: अच्छा तितली कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू।
0: अच्छा आज कौन खाई चो?
2: कितने बड़े?
0: एबे एबे कौन खाई चो?
2: एबे एबे पनीर परोटा खाई थी।
0: अच्छा पनीर परोटा खाई चो। आज फर्स्ट टाइम कॉल करी चो?
2: आज्ञा।
0: अच्छा तुम तो हमारा प्रोग्राम सब सुनो।
2: अज्ञा।
0: अच्छा तुमको तो किए सुनांती प्रोग्राम?
2: बाबा।
0: अच्छा बाबा भी सुनांती रेडियो?
2: अज्ञा।
0: ताले कौन कहिबा आज जहां विषय रही छे हमर जानी छ?
2: अज्ञा।
0: कौन टॉपिक रही छे आज?
2: ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहार अछि।
0: अरे बाप रे तुम इत्ते कथा सुनी छ? अच्छा कहार ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तमे रखी जा कहिला?
2: मो रखिनी मारा बाबा रखी जंती मो जेजे आउ मां कर फोटो।
0: अच्छा अच्छा जेजे आउ मां कर फोटो बाबा रखी जंती तमे से फोटो देखी छ?
2: आज्ञा।
0: अच्छा फोटो रे जेजे मां को चिन्ही पारिलो?
2: ना बाबा कहिले।
0: अच्छा बाबा कहिले चिन्ही देले ना?
2: आज्ञा।
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आम शो को कॉल कल कथा हेलो भल लगला। बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित कनेक्ट हो। हेलो नमस्कार। तेरे जड़े कुन्नी श्रोता आम सहित जोड़ी ही थिले आउ कहिले जे तंका जेजे आउ जेजेमा जेजेबापा फोटो रखी चंती तंकर बाबा आउ चिन्ह दे चंती। तेबे एते छोटो पिला आमर कार्यक्रम सब शुणुछंती तेबे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। शुणी खुशी लागुछि जे छुआ माने आजिकाली रेडियो शुणुछंती। तेबे नेक्स्ट कॉल किए करिछंती देखिबा। हेलो
1: हेलो जोजिना नमस्कार।
0: नमस्कार किए कहउछंती कोठो कहउछंती?
1: मु आलोक चंद्र जेना जाइलो कटकुर कहउछिली।
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद मैम।
0: कोन कहिबे आजर टॉपिक विषय रे?
1: मैडम आपण गले वर्षा आउछ ना नै?
0: वर्षा हे कि छाडी गलाणी
1: आमारे जीवजी हे कि जीवजी बकोजी।
0: अच्छा धीरे धीरे चारियाटा ठंडा पड़ी जीवो जेहेतु वर्षा दिन आसरेनी तथापि गुळगम होउची गुळगुळी चली छी किंतु ठंडा पड़ी जीवो। तबे कोन कहिबे आजर टॉपिक विषय रे?
1: गुळगुळी माम जहा जे होउजी मणिस पई होउजी
0: निहाती
1: भगवान की करुणा
0: दी निहाती निहाती जेहेतु ऋतु अछि ऋतु परिवर्तन होउजी आ आम मानकर लाइफस्टाइल एते माने चेंज हे गलाणी आमे एते मात्रा रे गच्छ काटुचे विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करुचे गाड़ी डंप यूजेस बढ़ुचे तेणु तापमात्रा भी बढ़ी बढ़ी चली छी।
1: मैडम कथा नै अपना हस्ते जिया छै जी किए होजी तर प्रतिवादी
0: निहाती निहाती बहुत सुंदर कथा कहिले किंतु कोन कहिबे आजर टॉपिक विषय रे जे काहर ब्लैक एंड
1: जर मुद्रे हेतिली 10 वर्ष रो बो बापा फोटो उठ देले हेटा अछि।
0: अच्छा
1: आज तो उने 15 वर्ष हला माटी दउ देली एले आदमीटी कारे से जो फोटो उठिया
0: में अच्छा से तो भी ब्लैक एंड व्हाइट रही दिया जाउथिला
1: रेस्टा से आदमीटी कारे कॉलेज रे आडी से ब्लैक एंड व्हाइट से फोटो अछि। आ बापांगर सर्विस भी पिरो

0: हेलो
1: हेलो मैम नमस्कार जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। किए कहते कौट कहते
1: मैम प्रफुल्ल प्रधान कहती कुआरपाल माणियामंदिर
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद मैम आज देवस्थान पूर्णिमा उपलक्षे आपको धन्यवाद मैम।
0: आपणको मध्ये अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। ईश्वर सबुबेले आपणको उपरे कृपा दृष्टि रखिथांतु। आपण सबुबेले सुस्थ रहंतु एंती आमको सुणुथांतु आ हम सता कनेक्ट होथांतु। कोन कहिबे आजर टॉपिक बिषयरे
1: मैम आगो प्रथम कहू समस्त भाई मान श्रोता बंधु आर्य मानक आज देवस्थान पूर्णिमा समस्त सुखमय आनंदमय हो ओ समस्त की प्रभु जगन्नाथ अमृत दृष्टि चाहि थांतु समस्ते सुखमय जीवन आरंभ करंतु।
0: निहाती बाबरे हम समस्त तरफ आपको शुभेच्छा शुभकामना।
1: मैम मोर ब्लाक एंड फटो 95 मसीहार अच्छी मो निजर अच्छी मो सान भाई अच्छी आमर गोटे ग्रुप आम करूँ 95 मसीहार स्वयं सहायक ग्रुप तार अच्छी गोटे कपी से बड़ फटो टे अच्छी प्राय आम 13 जन समस्त उठे गोटे बड़ फटो रखी रखी मैम कहीदी मानक ना समझकर मैम जड़े हेले मो सान भाई शरद प्रधान जड़े बड़ भाई नवीन बेहरा जड़े हेले सत्यवादी मुदुली जड़े दिलीप बेहरा जड़े पद्या बेहरा आउ भिकारी बेहरा एमती आम रखीचु आता भितर अच्छे मोर पुतुरा जड़े हे डाक प्रधान आम 13 जन रखीचु प्राय समय गोटे बड़ फटो करके घर तक सहित रखी आम घर मैडम कहते कहीं रखी आम कहे जहाँ गोटे फटो आम के खुशी उठेलु रखीचु आ मोर।

0: हेलो
1: आपा नमस्कार मु भुवनेश्वर सैनरु आसंत कहि
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
1: थैंक यू मैडम
0: कोन कहि बेजरा टॉपिक विषय रे
1: आपा मो रखि छी मो पिल्ला बेलर ब्लैक एंड फोटो रखि छी नै देनु भाई जो कहले मोर आलुआपना दायित्व सूर्य को तेल लगे गले कहि तुची पाटी जाय छी फोटो उठवनी
0: अच्छा
1: हमें भी सही लुआपना जाइथलु मना करते कहे ना तम तेल लगे चुट्टी पता पाती जी देख से तुम फटो उठे पारे जाए चुट्टी धोई
0: अच्छा अच्छा भी एक्सपीरियंस भी चुट्टी सफा कर
1: चुट्टी सफा कर फटो उठे अजार फटो आईर फटो आदि सैतिक रखी
0: जा फटो आप जानी खुशी लगे बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ी हेले जहाँ रही कथा शेयर कले सहित नमस्कार तबे केते पुरुणा लोकंक कथा केते पुरुणा स्मृति मन भितरे साहित्य रखी थाए ए फोटो टिके टिके केते कौन घटना आम सहित घटी थिला केते मजे आमे करी थिले केते सांग साथीक सहित बुलू थिले स्टूडियो को जाउथिले फोटो उठेयकु एमती एमती केते कथा ए फोटो गुडा कहि कहि दिए तबे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहार अच्छे आपखे आज शेयर करें नंबर टी 06712303153 हेलो
2: नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत कौन कह आज टॉपिक विषय
2: फटो तो ब्लाक एंड व्हाइट फटो से प्राय लोक नथापि मो बापा मो मा शशुर
0: बहुत बहुत गोटे सुंदर कथा भी कहले जे समस्त पाखरे न थाए किंतु आपण रखी तबे निहाती निजर थाउ न थाउ बापा मांकर अजाईंकर जेजे जेजे मांकर काहर न काहर हम पाखरे थिबो
2: फोटो उठे स्टूडियो को गले मुंड सफा करके आस नाला
0: फटो
2: भी से फटो उठेला बेले कैमरा वाला कहला फटो उठा मुंडा सफा करके आस
0: अच्छा अच्छा ठीक अच्छे
2: आ गोटे कथा अपा कहि मो झियरी आज जन्मदिन
0: अच्छा
2: शुभेच्छा शुभकामना
0: झियरी ना कहतु
2: झियरी ना हूँ देवी पूर्णा विश्वाल
0: देवी
2: देवी पूर्णा विश्वाल
0: देवी पूर्णा विश्वाल अच्छा।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदय पुरस्कृता। हरियाणा राजस्थान मध्ये दशक विलंबिताया यमुना जल विभाजन विवाद से अद्य समाधानम जातम। सर्वोच्च न्यायालयेन राम मंदिर दान प्रकरण से कथित वित्तीय अनियमितताया न्यायालय निरीक्षण अन्वेषण से त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन साम्प्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तन्त्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को

0: बचे नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटी और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज केवल खबर पूरी खबर।

टुना भाईना मेडिकल कॉलोनी जगत सिंहपुर लिखिंट शुभ संध्या ज्योति भौणी आज पवित्र दिन में प्रभु जगन्नाथ और करुणामयी मां सारला आपण को भलरे और खुशी रखन्तु एतिकी प्रार्थना करुछि। शुभ संध्या पवित्र दिन में रेनबोर समस्त सदस्य रेनबो शुणुवा समस्त सदस्य मान श्रोता मान शुभेच्छा देवास प्रभु जगन्नाथ और करुणामयी मां सारला भलरे खुशी रखन्तु प्रार्थना करुछि। शुभ संध्या सुस्थ रुह।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

हृदय अच्छी माने प्रेम निहाति हुए। प्रेम केतेबेले हुए, कहा सहित हुए, काहेकि हुए से कथा तो जाना न थाए, किंतु प्रेम एमती हो है जाए। आउ प्रेम हेबा परे प्रतिटी निश्वास रे, प्रतिटी प्रश्वास रे केवल तुम्हें ही मन पड़। हृदय प्रत्येक स्पंदन रे

0: ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛୁ ଶୋ ଗୀତରେ ମିତରେ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରିଙ୍ଗ ବୋକାଟକ ଦିଲ୍ ସି ଦିଲ୍ ତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9 ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟିକିଏ ପରେ।
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक 30 परम विशिष्ट सेवा पदक 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल

0: निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजाति

0: विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, तिपहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

रेनबो एसएमएस रे थरे एसएमएस करिछंती गदाधर तरसिया भुवनेश्वर रु कैलाश बेहरा कामिनी बेहरा कंट्रोल आठगढ़ रु एवं कन्याकुमारी बेहरा रीताराणी बेहरा संयुक्त बेहरा भास्कर बेहरा सुदाम चरण सबनम खान जस्मीन खान केन्दुपाटना सालेपुर रु।

तुषार कपूर की आवाज में परवर्ती एसएमएसटी करिछंती इंद्रमणि बेहरा बस्तपड़ा कटकरू शुणवाक चाहती अरविंद मुदुलिंग कंठरी सुंदर भजनटी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

ट्यून कर चुन दे अपन माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक द सेदल तक कौन दिल से दिल तक फ्री ए मॉर्निंग रे मॉर्निंग मेलोडी को नहीं की दबो मित्र आज अपन को सहित सकल सकल किसी मेलोडियस धुन सुनो छी अपन को किंतु ए संडे रो सकल रे मन पड़ी छै पीला बेल रो संडे कथा गोटे दिन स्कूल छुट्टी थाए स्कूल लो सब ड्रेस पत्र सेई दिन ही हमको सफा करिवार थाए हां घरे तो मां कर दियंदि सेते बेले हमको सफा करिवार टेंशन नथिला काहे कि ना सफा करिवार टेंशन आइरन करिवार टेंशन मां कर थिला और रविवार हेले आमी हमर लिस्ट काढी के बस जाउथले कि आज कोन स्पेशल घरे खाइबा हबो रविवार तो बहुत जन घरे आयस हुए हां मां माने टिके बात पड़ी जांती काहे कि ना मां माने रवि नारायण को व्रत करे थांदे किंतु

0: सुनिश्चितिया प्रमाणे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक कृतव मित्र आज आपनक सहित शो ने के डायल इन लाइव रे चलन देखवा नेक्स्ट मध्ये के डायल कर छन एंड से कोन कहू छन किसी कथा नहीं कॉल टी कटी जाएगी किंतु आपण माने मध्ये कॉल करि परबे ऑन द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करि परबे आपनक कहानी मो सहित चलन देखवा हमर नेक्स्ट कॉलर के आछन एंड से कोन कहू छन आज रे टॉपिक को नहीं हेलो
1: हेलो दीदी नमस्कार
0: नमस्कार के कहछंती कोठ कहछंती
1: ओ कटक रे रश्मिता हेरा कहछी आपण कोन पचाछंती मुटी बुझी करली
0: आपणक जीवन रे एमती के अछंती जहांकर संघर्ष कहानी आपणक प्रेरणा दिए
1: आमो मां अछंती
0: अच्छा मांक जीवन रे कोन संघर्ष रहिछे से कहानी रो पदे हमकु जणेबे
1: आइया दीदी हम जीवन रे त बहुत दुख आमो मा केते बेले सुख पाइनांती आमे होके पाइला दिन छु देखी छु आमो मा आछिनी सब बेले पाइ खटुथले आम बाबांग दिह भल रुहेनि सेइ प्रेरणा आम मा आमको देइछिनि जाइछन्ती आमे भी आम जीवन सारा खटु छु
0: अच्छा सेइथिपाइ त कथा रे अछि गोटे धान कुटुनी मा सहे घोड़ा चढ़ा बापांक सहित समान आउ मा जेहेतु आपनको ए संघर्षर यात्रा आपनको देखै दे जाइछन्ती तांको जीवन रे जेहेतु अनेक संघर्ष थिला सेइठो आपन प्रेरणा पाइछन्ती सेमिति प्रेरणा पाउ थांतो एवं निज जीवन पथरे जेते पे बाधा विघ्न आसिले से सब रे हटि न जाय आगो को बढ़ि चलतो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करथिबार
1: रानी दीदी नमस्ते
0: नमस्कार आपण भी कॉल करि परबे ऑन द नंबर 0671230315 3 रे एवं

0: सुनिश्चित अपने माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक कौन से दिल तक की शो शाली से डायल इन लाइव प्रचारण तो देखिवा नेक्स्ट मध्य की डायल कर चंदे अंत से कौन कौन चंदे हेलो
1: बोले नमस्कार जय जगन्नाथ
0: नमस्कार जय जगन्नाथ के कौन चंदे कोट कौन चंदे
1: मुंह को उठले आप अपन करा भूतपूर्व कलर राजेश नायक फ्रॉम चत्तिका बाजार जगतसिंहपुर
0: आजर टॉपिक उपरे कण कहबे आपनके जीवन रे एमती के नायक बा नायिका अछंती जहांकर संघर्ष कहानी आपनके सब बले प्रेरित करथाय
1: सुंदर टॉपिक अंजन जति पे दिल से धन्यवाद देबी अगर टॉपिक उपरे कहबी एमती तो बहुत लोग दुनिया रे अछंती किंतु मते बेसी मो बापा भारी इंस्पायर करंती कारण बापा कोंदी जे आमे चासी घर पिला कष्ट करी के मुंडा जाला तुंडे रे मारी के स्ट्रगल करके पाठ पढिजु बापा भी आमर क्लरिकल जब करते डीआई ऑफिस एजुकेशन डिपार्टमेंट रे आउ बहुत दुख कष्ट करके आम को दी भाई आ तीन भौणी के पाठ पढ़ के मनीष करेंगे तेनाली कथार मुझे इंस्पायर हुए जहाँ जमी मुझे पाठ पढ़ी ग्राजुएसन करएलएलबी कर हायर एजुकेशन भी करेणु निज गोटे निजे ढड़ा हम क्या डिपेडाट हेनी कथा अनुसार मुझे पाठशाला पढ़ी एजुकेटेड हो बर्तमान जाए जमी मुझे सेल्फ बिजनेस कर प्राइवेट जॉब कर रोजगार करुजराण मेट पर
0: कहानी सब
1: आज बापा तो ना गला कैंसर एक्सपायर कर बर्षे देढ़ वर्ष हम आज आप टॉपिक बापा कथा मोर मन पड़गला
0: बापा आपण हृदय सब बेल अच्छा आपण हृदय भितर से सब बेल रही कहानी सब बेल आपको प्रेरणा जगह था बहुत बहुत धन्यवाद कॉल कर जय जगन्नाथ आपण भी कॉल कर पारे अन द नंबर 06713103153
2: राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले ले रे कोई राम का प्यारा चोर मचाऊं गली गली सुबह सकाळ नमस्कार देवमित्र मैम
0: सुबह सकाळ नमस्कार आज रे टॉपिक ऊपर कौन कहबे के कहउछंती कोड कहउछंती
2: मैम प्रायोरिटी तो बापा को देबी बापा बहुत माने आम दस जन भाई भी बहुत कष्ट कर मत सब विरक्ति कहते देख लो माँ का ना धरी कहते देख लो ये सारा जीवन रे कर चलिए गोड़ को गोड़ बाजुची आई शब्द ही प्रति मुहूर्त मत एनर्जी हिंदे जगह ये थी बापा कि बर्तमान जेनेसन मुझे कर्मरत मोर जो छोटिया बिजनेस अच्छी कटक मालगोदाम ସେଇଠି ଜଣେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୟସ ତାଙ୍କର 60 ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ସହିତ ପୁରା ମାଲଗୋଦାମ ସାରା ବୁଲିକି ସେ ମାଲ ଟେମ୍ପୁରେ ନିଜେ ଲୋଡ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସେଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଖେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଏ ଦେଖ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି କି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ
0: କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ
2: 60 ଉପରେ ମ୍ୟାମ୍
0: ବାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ
2: ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସ୍ପାୟରିତ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ
0: ଯା ହଉ ଏତେ ବୟସରେ ବି ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ
2: ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଡି କିଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏବେ 3 କାଳ ଘରେ ରହିକି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିକି ସେ 2 ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କର ବର୍ଷେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ
0: ଏବଂ

0: को बहुत श्रद्धा भक्ति करे
1: जाहो एत्ते संघर्ष परे भी से हार मानी चाहि नहंते जीवन यात्रा रे से
0: सब बड कथा ल असि मालगदन सेरा जो माल लोड करन जे एवं खाली पाद रे जो खरा माने बर्षा रे आमे चप्पल पिंदी के चली पारुने से किंतु सब बड़े बुली के माल लोड करने रे मु निजे से लोड लोडिंग वाला भी रखंतिनी
1: बापरे अच्छा तो बहुत परिश्रम से आपण कथार जना पड़ी और तांको भगवान बहुत धैर्य दे धैर्य दे तो तांको धैर्यर कहानी एवं तांको परिश्रमर कहानी तो आपण भी नोटिस करी छंती एमिति अनेक जनक आखि को आसुथिबो जीवन यात्रा रे से हारी जाय नहि
0: मानको जत्ते भी टेम्पो वाला भाई अछंती एवं कंटा वाला भाई मन जे मु तांको ही देखाय देखंतु आंको थारु विमान परिणत वॉइस रे केते चलाचंचल
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मानसिकता मानविकता रे जदि माने संघर्ष जदि बसा बांधे ताले सब किछि संभव मैम
1: बहुत बहुत धन्यवाद एते सुंदर कहानी हमको आम पाखरे पहुंचे थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करथिबारु
0: नमस्कार आज्ञा
1: सत कथा एज इज जस्ट अ नंबर ए कथा प्रमाणित करि दउछंती सेई भाई जनक जहां 60 वर्ष बयस रे भी से निज कर्मपथरु हटी जाय नहंते निज कर्म करूछंती अदम्य परिश्रम करूछंती ए खरा गरम रे मध्य जो मानक पाखरे सब किछि थाय कि भी जो माने ऑब्जेक्शन आनी थांती कि या राजी एटा भल होलानी सेति पई मो एटा करि पाललिनी बहुत थक्का लागुछि बयस हो गलानी ई सब लोक मानकठु प्रेरणा निहाति पाइबा दरकार एवं निज जीवन रास्त जिते भी कष्ट आसु जिते भी परिश्रम आसु सी सब को सामना करिबा दरकार धैर्य हरा केबे भी हवा कथा नो आपण माने भी डायल कर परिबे अन नंबर 0671230315 रे एवं शेयर कर परिबे आपण को आखो पखरे एमती की अछंती जो मानन का संघर्ष रो कहानी आपण को सब बळ पाई प्रेरणा जोगै थाय किंतु एबे पाई कुमार बापिंग का कंटेंट ब्यूटीफुल सा ट्रैक के बळ आपण समस्तन का पाई स्टे ट्यून्ड

ट्यून कर चुके हैं अपन माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक रे दबो मित्र आज अपन को सहित शोनी किरण वो एसएमएस रो चलो तो देखिबा नेक्स्ट एसएमएस के को लिखि पठी चंदी एवं कौन लिखि चंदी एही एसएमएस करो चंदी जितेंद्र नियाली माधव रो सुनिबा को चाहि चंदी दिल है तुम्हारा रो दिल ले गया गीत टी शुणा को चाहते निहाती भाव आप मन पसंद गीत आप खूब शीघ्र मुझे पहुंचे देवी परवर्त एसएमएस किए कौट लिखिंट एसएमएस लिखिं पावन चंद्र पाल और ममता पाल कटक किशोर नगर शुणा को चाहते मे खिलाड़ी तु अनाड़ी चलचित्र कुमार शानु एवं अलकाग्निका कंठरे पास बो आने लगे गीत टी शुणा को चाहते निहाती भाव मन पसंद गीत आप।

0: ଦିନ 10:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଠିକ୍ ଦିନ 11:00। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का News on Air app.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सब कण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500

से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार
देश के करोड़ों परिवारों तक

सुरक्षा का कवच पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही

गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़कर के रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहे, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुन

सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की
सृजन

शीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए
मेरा आप

0: सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: सुनिथिले मन की बात शीर्षक भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन प्रचार करूथिलु आकाशवाणी दिल्लीरो। सुनंतु मन की बात शीर्षक भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य देइथिबा उद्बोधनर ओडिया भाषांतर।
3: मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार, मन की बात रे पुणि थरे आपण समस्तंक सह जोडी होई मते बहुत खुशी लागुछि। 2026 वर्षर प्रथमार्थ बीतिबाकु बसिलाणी। एई 6 मासरे आमे मन की बातरे देशवासीको अनेक उपलब्धि संपर्करे आलोचना करिछु। जूनरे मध्य देश एभळी किछि उपलब्धि हासिल करिछि जहाँ प्रत्येक देशवासीको गर्वित करुछि। एही सफलता गुडिक देशर सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर।

ट्यून कुछ नहीं 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सबर सागर ऐसी पहुंच जाए आप पाखे आरंभ कर प्रोग्राम किछ कथा किछ गीत फ्रेंड्स आकाशर भासुथिबा मेघ को देखिले केबे केबे लागे सेमने बुद्धे किछ कहानी नहीं घुरछन्थि केउठी समुद्रर बार्ता केउठे पहाड़र निश्वास आउ केउठी दूर गाँव कौनसी अपेक्षा मेघ आमको गोटे सुंदर शिक्षा दिए स्थिर हो रही जीवनर सौंदर्य को देखी हेब ना आगक बढ़ाक पड़ बदलवाक पड़ आउ नुआ दिगंत को खोजाक पड़ आज आम कथा एमती एक विषय

वेलकम बैक टू क्रिश्चियन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सबर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स मेघर मध्य गोटे भाषा अच्छे केबे से चुपचाप आकाश रे भाषे केबे गर्जन करे आ केबे वर्षा हुई मनर सब अव्यक्त कथा को छराइ दिए ठीक मनीषर मन पर आउ मध्य अनेक समय रे आमे माने हसी थाउ कथा हो किंतु मन भितरे अनेक कथा जमा हुई रही थाए केबे केबे गोटे वर्षा दिने से अनुभूति को शब्द दे दिए वर्षार प्रथम बुंदा जेतेबेले सुखिला माटी को छुई सेतेबेले जो महक उठे ता केवल माटीर नुहे से होची स्मृतिर महक आउ से महक रे थाए शैशवर खेल गाँव रास्ता कागज डंगा आउ बीती जाइथिबा दिन उड़क आज जीवन बहुत व्यस्त हो गला सत किंतु भिजा माटीर सुगंध आसिले मन हठात बहु वर्ष पर्छ को नीति भाव फेरी जाए

वेलकम बैक टू कुचन म्यूजिकल यूज 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दिल तक रेणु हम सफर सागर अच्छी आप सहित सो चल किसी कथा किसी गीत फ्रेंड्स जीवन मध्य माटी परी केबे सुखी जाए केबे फाटी जाए केबे क्लांत हो पड़े किंतु आशार वर्षा आसिले पुणी थरे सबुज हो उठे से जीवन रे जेते कष्ट आसु आशार मेघ को केबे ले हरायबे नाही कारण प्रत्येक सुखिला माटी पई गोटे वर्षा निश्चिंत अपेक्षा करिथाय केबे ध्यान दिछन्ति कि वर्षा होतिबा समय रे मन टिके अधिक भाव प्रवण होइथाय पुराणा बंधुक कथा मन पड़े छाड़ी आसीथिबा घर कथा मन पड़े आउ केबे केबे सेही लोकक कथा मन पड़े जे आज आम पाखरे नाहंती वर्षार ए अद्भुत शक्ति अछि से मन मौलिक धोई दी थे आउ स्मृतिर झरका को खोली दिए।

वेलकम बैक टून कुछ म्यूजिकली हो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीत फ्रेंड्स मनर कथा सब बेले शब्द रे प्रकाश पाए नै केबे से चा कुबरु उठितिबा बाष्प रे लुचि रहे तो आउ केबे छरो पाखरे बसी वर्षा देखि पारे तो आउ केबे रातिर नीरवता रे मन चाहे किछि समय निज पाई किछि समय स्मृति सह किछि समय स्वप्न सह आउ वर्षा दिन दिन गुडीक सही सुजोग निहति भाबरे नै एसेंति गांर वर्षर दृश्य आज मध्य अलगा प्रकार रा छपर उपरे वर्षार टुप टाप शब्द अंगणरे चमुथिबा पानी आउ दूर क्षेत्र आसुथिबा भिजा माटीर महक सेई दृश्यरे थाए एक अपूर्व आपण आपण सहरर कोलाहल भितरे मध्य सेई स्मृति उडिक मनर एक कोणरे जीवंत होई रहिथाए सेथिपई वर्षा आसिले मन अजानतरे गांकु फेरि जाए

वेलकम बैक टून कुचुन म्यूजिकली हो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीत प्रिंस जीवन रो सबठरो सुंदर कविता बोध हुए प्रकृति लिखी थाए मेघ तार शब्द वर्षा तार सुर माटी तार अनुभूति आओ मन तार पाठक आज जदि बाहर वर्षा होची टिके समय बाहर करंतु छरका पखर बसंतु मेघ को देखंतु माटी रो महक को नियति बारे अनुभव करंतु आ हां निज मनर कथा सुनंतु होय त सेठरे आपण निज जीवन रो कोनोसी सुंदर उत्तर खोजि परिबे मेघ आकाश रे बसे माटी वर्षा को अपेक्षा करे आ मन स्मृति को सेंति साहित्य रखे तो फ्रेंड्स एडी शेष करछु आज रो किछ कथा किसी गीत प्रोग्राम स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशी कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

सिकंदर के घोड़ों की टापू ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा और कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

बार बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है